0: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
1: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
0: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
3: कहते हैं अयोध्या में एक रसोई थी, सीता की रसोई, जहां माँ सीता अन्नपूर्णा के रूप में सिर्फ भोजन नहीं, प्रेम और सेवा परोसती थी। और अब वही पवित्र स्वाद, वही भाव श्री अयोध्या भवन में, ऑपोजिट टू द कार्य सिद्धि हनुमान टेंपल इन फ्रिस्को।
4: फर्स्ट एवर ऑथेंटिक सात्विक फ्लेवर्स विद नो अनियन एंड गार्लिक,
3: वेयर एवरी डिवाइन फूड इज एन ऑफरिंग। ओपन डेली फ्रॉम 7 AM, लोकेटेड एट इंडिपेंडेंस एंड एल्डोराडो। श्री अयोध्या भवन, वेयर टेस्ट मीट्स डिविनिटी।
5: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
9: जीनी हुकम मेरी अकल, हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
10: मिराज लाउंज चलिए मेरी अकल, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
11: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
10: नो प्रॉब्लम अका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
11: और एंटरटेनमेंट,
10: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स, सब आपकी खिदमत में।
11: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
10: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
12: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
13: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
8: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

जी हाँ, नो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, वेल दैट वाज श्योर. चलिए लेके चलता हूँ आपको. वेल द क्वेश्चन शी वाज आस्किंग वाज डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर लव. ऑफ कोर्स यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर लव, क्योंकि

जी हाँ यार, होता होता होता कई बार है. वेल दैट आंसर्स द क्वेश्चन दैट शेयर वाज आस्किंग. डू यू बिलीव इन लाइफ आफ्टर लव? ऑफ कोर्स यू डू. वेल लेट मी टॉक टू यू अबाउट पैशन, हेल्थ केयर, प्राइमरी केयर. हाउ मच टाइम हैव यू स्पेंट विद द डॉक्टर? 5 minutes, 10 minutes? वेल पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, एवरी अपॉइंटमेंट्स इज स्केड्यूल्ड फॉर 30 minutes बिकॉज दे अंडरस्टैंड दैट टॉकिंग अबाउट हेल्थ टेक्स टाइम. एंड पैशन हेल्थ, एट पैशन हेल्थ यू नॉट जस्ट अ पेशेंट, यू आर फैमिली. For you and for your family and for the health of the community, Passion Health Primary Care is here. And that is not all. Passion Health is growing and they're looking for primary care doctors, endocrinologists, pediatricians, psychiatrists for full-time and part-time opportunities. If you're passionate about patient care, do send your resume at passionhealthphysicians@gmail.com or you can text 217-454-46. Hang on. Something is wrong. Visit passionhealthphysicians.com or you can call or text 214-666-6259. Sorry, 214-666-6259 is the number for you to call and text to get more information about Passion Health Primary Care, whether you're a patient or a doctor. They are looking for full-time and part-time opportunities. And if you're a patient, definitely go in, because at Passion Health Primary Care, you're not just a number. You are family.

जी हाँ, तुम क्या जानो ये दिल खिल महफिल, सनम महफिल नहीं, दिल है टेकन फ्रॉम हम, किसी से कम नहीं। और जब आपका दिल हो जाबाज तो फिर क्या कहने।

जी हाँ, जब तक होश में जवानी, जब तक खून में रवानी, मुझे होश में आने न दो, प्यार दो, प्यार लो, क्योंकि आखिर यार हम प्यार करने वाले हैं।

जी हाँ, तीर तेरी नजरों का ना कभी चूका, मा मा मा मा शूका. What a beautiful mashup that is. I love that mashup. In fact, not every song is about fast beat. Sometimes कहा जाता है कि यार जब आपका दिल खुश होता हो तो आप बीट पे फोकस करते हो, और आप थोड़े संगीन मूड में होते हो तो आप लिरिक्स पे फोकस करते हो. और पर कुछ गाने ऐसे होते हैं जिसमें बीट भी होती है और लिरिक्स भी उम्दा होते हैं. चलिए लेके चलता हूँ आपको ऐसे ही अगले गाने की ओर. उससे पहले लेके बताता हूँ मैं आपको तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट के बारे में. वेल, तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड इज़ द न्यू फ्लेवर डेस्टिनेशन फॉर ऑल द स्पाइस लवर्स. जी हाँ, सर्विंग अप सिजलिंग तंदूरी प्लेटर्स, रिच करीज एंड नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स विद दैट होम स्टाइल पंच. अगर घर की याद आनी है तो आपको पहुँचना है तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट्स, फ्रॉम स्मोकी तंदूरी कबाब्स टू वेलवेटी करीज एंड फ्रेश हॉट नान. एवरी प्लेट फील्स लाइक अ सेलिब्रेशन. स्टेप इन टुडे एंड लेट तंदूरी फ्लेम सर्व यू द काइंड ऑफ मील दैट टर्न्स एन ऑर्डिनरी डे इनटू अ फीस्ट. तंदूरी फ्लेम रेस्टोरेंट लोकेटेड इन गार्लैंड. जी हाँ, जरूर चेकआउट कीजिए तंदूरी फ्लेम. चलिए लेके चलता हूँ आपको अगले गाने की ओर, और टेकिंग यू दिस टाइम टू द वर्ल्ड ऑफ वेलकम टू द जंगल. This song, the original song, is absolutely stunning with Akshay Kumar and Katrina Kaif, and they remade this song. Well, I love the beat of the song, no matter whether it's old or new, but naya wala bajata hoon aapke liye. Aur agar aapko kuch sunna ho to call kijiye. 972-235-5555 hai studio ka number. You tuned into Jile Zara with RJ Somil.

जी हाँ, वी डिडंट स्टार्ट द फायर बिली जोल. वेल द सॉन्ग इज लाइक द पत्थर के फूल, कभी तो छलिया लगता है, पेंडर रोड, ऑल दीज थिंग्स, ऑल द ज्योग्राफी रेफरेंसेज एंड ऑल द हिस्टोरिकल रेफरेंसेज इन द सॉन्ग ब्रिंग्स बैक सो मेनी मेमोरीज. वेल हैप्पी जुलाई 4th टू ऑल दोज हु आर सेलिब्रेटिंग. हैप्पी जुलाई 4th टू, हैप्पी बर्थडे अमेरिका.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
3: हाँ, देख लेंगे।
2: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
3: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
4: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar Ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar Ji, 945-527-0897. Or visit astrologerishwar.com.
6: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
7: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
6: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
7: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
9: जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
9: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
13: दिस 4th of July सेलिब्रेट विद अ फीस्ट एट फन पिज़्ज़ा किचन एंजॉय द फ्रीडम फीस्ट फॉर जस्ट $30.99 और गो बिगर विद द लिबर्टी फीस्ट फॉर ओनली $35.99 अ मीडियम सिग्नेचर पिज़्ज़ा लार्ज चीज़ ब्रेड एंड योर चॉइस ऑफ चीज़केक और टिरामिसु एंड योर चॉइस ऑफ लार्ज फ्राइज और 5 रिंग्स डाइन इन ओनली
14: This Independence Day, great food, great times, great company, only at Fun Pizza Kitchen.
15: ये तारा वो तारा हर तारा
16: अरे अरे अरे डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
17: Hi, this is Sharvari. You are listening to Fun Asia Radio.

यहाँ जंगल में कांड हो गया, टेकन फ्रॉम द मूवी भेड़िया ऑफ कोर्स। चलिए मैं बताता हूँ आपको, आपको मिल रहा है एक मौका विशाल शेखर के जो का जो इवेंट आ रहा है, जो कॉन्सर्ट आ रहा है, उसकी टिकट जीतने का आपको मौका मिल रहा है। मुझे आप बताइए इस गाने में कौन कौन थे सिंगर्स। जंगल में कांड हो गया 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। सही जवाब को मिलेगा एक टिकट टैटू विशाल शेखर लाइव, विच इज हैपनिंग ऑन संडे जुलाई 12th। डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्लेलिस्ट इज अबाउट टू गेट लिट। विशाल शेखर द डुओ बिहाइंड बॉलीवुड्स बिगेस्ट सुपर हिट्स, दे हैव क्रिएटेड सम एंथम डांस सॉन्ग्स दैट वी ऑल डांस टू, एंड दे आर ब्रिंगिंग द सुपर हिट टूर टू डैलस ऑन संडे जुलाई द 12th एट कर्टिस कलवेल सेंटर। ये होने वाला है गार्लैंड में, एंड द टिकट्स आर ऑन सेल राइट नाउ। बट इफ यू कैन गिव मी द सिंगर्स इन दिस सॉन्ग, यू गेट अ चांस टू विन वन टिकट टू दैट। एंड when you go to cashpatelproductions.com cashpatelproductions.com to buy your tickets for you, your friends, your family and your group, make sure you punch in the code Phonesia and you will get a 30% discount. Ji haan, listenership and loyalty has its own rewards here at Phonesia. When you punch in the code Phonesia or at Cash Patel Productions, you get a 30% discount. Chaliye leke chalta hu aapko agle gaane ki aur sunata hu main aapko ye khoobsurat sa gaana.

ठीक है, डिगे डिगे डिगे डिंग करते करते हम ब्रेक की तरफ बढ़ रहे हैं। और वेल फॉर दोज ऑफ यू हु आर आउट एंड अबाउट लुकिंग फॉर द फायरवर्क्स एंड सेलिब्रेटिंग द 250th बर्थडे ऑफ अमेरिका, वेल हैप्पी जुलाई 4th टू यू गाइज। चलिए लेके चलता हूँ आपको अनदर आइकॉनिक सॉन्ग दैट सिग्निफाइज द स्पिरिट ऑफ अमेरिका।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करो
2: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
3: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
4: इतना सब और प्राइस
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
5: साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
6: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
5: नहीं
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है
5: नहीं
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
5: वो भी नहीं
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
7: This 4th of July, celebrate with a feast at Fun Pizza Kitchen. Enjoy the Freedom Feast for just $30.99. Or go bigger with the Liberty Feast for only $35.99. A medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu. And your choice of large fries or five rings. Dine in only.
3: This Independence Day, great food, great times, great company. Only at Fun Pizza Kitchen.

जी हाँ, रेज योर वॉइसेस, मेक सम नॉइजेस, तेरे लिए आए हैं हम देसी बॉयज, तुम्हारे लिए ही लेके आया हूँ मैं देसी बॉयज। चलिए, जाने का वक्त रहा मेरा, चलते चलते आखिरी दुकान सुनाते चलते हूँ मैं आपको, और बताता हूँ आपको फन पिज्ज़ा किचन के बारे में। वेल, इफ यू क्रेविंग समथिंग चीज़ी विद अ देसी ट्विस्ट, इफ़ यू आर आउट अबाउट फॉर द पार्टी एंड इफ यू आर लुकिंग टू इन्वाइट सम पीपल ओवर, इफ यू डोंट वांट टू गेट इन द किचन एंड मेस विद द प्रिपरेशंस, वेल फन पिज्ज़ा किचन हैज़ द July 4th वीकेंड सेलिब्रेशन विद फीस्ट फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन। एन्जॉय द फ्रीडम फीस्ट for just $30.99 or go bigger with Liberty Feast for only $35.99 where you get a medium signature pizza, large cheese bread and your choice of cheesecake or tiramisu and your choice of large fries or five wings. This is only available for dine-in at funpizzakitchen.com, which is where you can get more details, and this is a dine-in only offer at the Frisco location and does not apply for takeout. The offer is valid from July 2nd through the 5th. So it's available tonight and tomorrow as well. And make sure you go to Fun Pizza Kitchen. And this offer is only available at the Frisco location. Just like I told you. Chaliye, aakhri dukaan sunate chalta hu main aapko. And if you are out and about looking for the fireworks, I have one coming at you by Katy Perry.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Coughing or sneezing at home, your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
2: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
5: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स मे वेरी।
6: माय टाइम इक्वेरी, अ रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी फर्म ओन्ड बाय सीपीएस सुधीर पाई, ऑफर्स इन्वेस्टमेंट एज अ सर्विस, फाइनेंशियल प्लानिंग, एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, टैक्स प्लानिंग, रियल एस्टेट, हाई यील्ड नोट्स एंड अदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स। फॉर फर्दर डिटेल्स विजिट mytimeequery.com और कॉल सुधीर पाई एट 972-330-2771 और ईमेल wealth@mytimeequery.com टू हेल्प यू अचीव योर फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव टुडे। Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
7: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: Aji sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
0: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
0: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में सब संभालेंगे?
0: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉनस्टॉप बॉलीवुड, नॉनस्टॉप स्वैग।
1: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Phonasia.
2: I'm loving the music.
1: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी, स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।
2: Experience the thrill of the dance floor like never before with Club Fanasia.
3: I'm loving the music.
2: The ultimate destination for Bollywood dance hits.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming. Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
2: Hi, this is Vinay Pathak, and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
4: Hi, this is Janvi Kapoor, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
5: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
6: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
7: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
6: नहीं.
7: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
6: नहीं.
7: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
6: वो भी नहीं.
7: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
8: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax. Your growth, our strategy.
9: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: बेटा 95% आए?
3: हाँ मम्मी.
2: गुड. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
4: मेरा?
2: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
4: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
6: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपरहिट
4: This is Uday Chopra, and you are listening to Fun Asia Radio.

Don't touch that dial. Keep listening. Bop, bop, bop, bop, bop, bop.

0: बादशाह तो आपके लिए पक्की है ना, महाभारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब उनका सर वो नेपाल में और खड़िया रही है।
1: जय साहब,
2: जय
0: सृष्टि के। 7 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: इधर अपना इलाका है, चाय पानी मौसम मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल जरा रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़ेगा जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे। अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसे।
1: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता। ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
2: भाई
1: भाई गलत बात है।
0: जय भोलेनाथ, शाम को मिलता हूँ।
2: मेहरबानी करके कुछ

0: समझें? हाँ?
1: बढ़िया।
2: Your favorite music on your favorite radio.

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: मैं साबित कर सकती हूँ।

0: ले लीजिए, बताइए कहाँ ले जाए?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटना एग्जाम ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक्चुअली।

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: So let me present to you the Pandavas.

0: We need to show the world our power. अब हम डर के शांत नहीं बैठेंगे, करके शांत बैठेंगे।
1: कौन है ये लोग? कहां से आते हैं?
2: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देख कर खुश मत होइए, बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, your growth, our strategy. AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।

जान लेके किस्मत ने बांटे है राहों में कांटे है मैं भी उसे दिया हूँ किस्मत के आरे रुको के रुको तुकी राह में उठू पिछले तोड़ कर फैलाऊंगा मैं पर तुझमें जितना है जोर तू लगा ले मकर

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, टैलेंट में रेडियो का टैग, फोनेशिया 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phoenicia Radio.

नेशन का फन स्टेशन फनेशिया रेडियो 104.1।

0: रुको जरा, सबर करो।
1: अगला गाना फुल वाइब बदलने वाला है। स्टे ट्यून टू फनेशिया।
2: Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive.

0: Akshay Kumar. Let's take a selfie now.
1: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है.
2: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त. जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो.

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

ये मूवी, ये सॉन्ग 71 years अगो रिलीज हुए थे 1955 में, और ये आवाज़, ये संगीत, ये सुर, ये इतना अच्छा म्यूजिक, ओ माय गॉड, इतना लगता ही नहीं कि 71 years अगो ये पुरानी ये मूवी आई थी. मन्ना डे साहब की आवाज़, शैलेंद्र के लिरिक्स एंड शंकर अजय किशन का म्यूजिक. इस फिल्म का नाम सीमा, जिसमें नूतन जी को सबसे पहली बार अपना फिल्म फेयर अवार्ड मिला था बेस्ट एक्ट्रेस की कैटेगरी में. 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और आज पहला संडे है इस इतने सुंदर महीने का, जुलाई का महीना है, सेवेंथ मंथ है एंड फिफ्थ डे है. बस अब जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, अब इसके बाद तो फॉल सीज़न आएगा. फॉल सीज़न में तो फिर आपको पता है कि फेस्टिविटीज़ बहुत सारे अच्छे अच्छे जो हैं फेस्टिवल्स आते हैं. विंटर इज़ फुल ऑफ नाइस फेस्टिवल्स. क्रिसमस का ही फीवर इतना लंबा चलता है. एंड देन ऑफ कोर्स वी हैव द न्यू ईयर्स आफ्टर दैट. सो 9722355555 दिस इज़ द नंबर टू द स्टूडियो एंड आई एम RJ एकरूप. मैं यहाँ पर रहूँगी 10 बजे तक. आप के कॉल्स करते रहिए. आपकी कोई पसंद का गीत हो तो मैं यहाँ पर ज़रूर प्ले करूँगी.

1963 की ये इतनी वेल नोन पॉपुलर फिल्म दिल ही तो है, और इस सॉन्ग के लिए मन्ना डे साहब को बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था फिल्म फेयर की तरफ से. इतना अच्छा इन्होंने ये गाना गीत जो है गाया भी था, निभाया भी था. एंड दिस सॉन्ग हैड राज कपूर इन इट, और ये जो है रोशन साहब के म्यूजिक. इसमें जो है बाकी सॉन्ग्स भी बड़े पॉपुलर थे, स्पेशली वो जो सॉन्ग था निगाहें मिलाने को जी चाहता है, वो आशा जी की आवाज़ में था, यमन कल्याण राग था. और ये वाला भैरवी राग पर निर्धारित लागा चुनरी में दाग, जिसको गाया मन्ना डे साहब ने. दिस वाज आल्सो अ वेरी क्लासिक फिल्म. दिस इज स्टिल कंसिडर्ड अ क्लासिक फिल्म दिल ही तो है, जो आई थी 1963 में. माई टाइम एक्विटी विच इज लेड बाई सी पी ए सुधीर पाई हेल्प्स इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज बिल्ड स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रेटजीज थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रियल एस्टेट अपॉर्चुनिटीज एंड ऑल्टरनेटिव investments. If you are planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. To jo hai Sudhir Pai, wo apni services bahut tailor karke aapki needs ke around jo hai usko design karte hain. His services would be aligned with your strategies and your ideas for investment opportunities. You can definitely contact CPA Sudhir Pai via his phone number, which is 469-702-1272, or you can visit his website, which is mytimeequity.com.

1962 की इतनी मैसिवली ये हिट फिल्म जिसका नाम हम दोनों, आई थिंक इसमें देवानंद साहब का डबल रोल था एंड ही डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस फिल्म.

दोनों. आई थिंक इसमें देवानंद साहब का डबल रोल था एंड ही डिड सच अ फैंटास्टिक जॉब इन दिस फिल्म. इसमें एक और बड़ी खास बात ये थी कि इसमें नंदा जी एंड साधना जी जो हैं दोनों नज़र आई थी. दिस वॉज आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट यूनिक कास्टिंग. इस फिल्म के बाद तो ये दोनों एक्ट्रेस इकट्ठे एक फिल्म में नहीं नज़र आई. और जो है इसमें देवानंद जो हैं वो एक आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले कर रहे हैं. सो ही प्लेज द डबल रोल ऑफ कैप्टन आनंद एंड मेजर वर्मा. सुपर डुपर हिट फिल्म थी ये उस ज़माने की 1962 और इसके सॉन्ग्स भी इतने कमाल के थे. स्टोरी भी बहुत अच्छी थी. सॉन्ग्स भी बहुत लोगों ने पसंद किए थे एंड द म्यूजिक वॉज गिवन बाय जयदेव. ये अगला सॉन्ग विच विल टेक अस टू द कमर्शियल इनटू द कमर्शियल ब्रेक. फिल्म का नाम मधुमति.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
1: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
2: मेरे कल वाले खाने में दोसा, आने वाले खाने में दोसा।
1: क्या आपको भी हमेशा दोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
3: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
1: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
0: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
8: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
13: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
12: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
13: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
12: सच में सब संभालेंगे?
13: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
14: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.

0: साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।

0: आप जानती हैं हम क्या गा रहे हैं?
1: मैं इतना भी नहीं समझूंगी, आप ही ने सरगम सिखा रहे थे।
0: आपको तो नहीं सिखा रहा, आपने तो अपने बाबूजी से सीखा होगा। हाँ तो कहाँ तक पहुंचे थे हम?
1: पंचम तक।
0: कैसे? कहिए ना।
1: सा

कर्नल रॉय का रोल प्ले किया था प्राण साहब ने, एंड ही वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड डिटर्मिंड कैरेक्टर इन द फिल्म जिसका नाम परिचय. और उन्होंने इस नौजवान को हायर किया था. एट दैट टाइम ही वॉज अनएम्प्लॉयड, यानी कि जितेंद्र जी का जो रोल था रवि, वो जो उस टाइम पे ग्रेजुएट होते हैं. फिल्म में दिखाया है कि ही जस्ट ग्रेजुएट्स फ्रॉम कॉलेज बट ही डज नॉट हैव अ जॉब येट. तो फिर वो इस जॉब को लेने के लिए एक्सेप्ट कर देते हैं बिकॉज ही इज़ लुकिंग फॉर जॉब्स, एंड वो बन जाते हैं इन बच्चों के टीचर कह लीजिए या केयर गिवर कह लीजिए. और फिर यहाँ से जो है बॉलीवुड वर्जन ऑफ साउंड ऑफ म्यूज़िक, द साउंड ऑफ म्यूज़िक शुरू होता है. बहुत ही अच्छे सॉन्ग्स थे इस फिल्म के, और सॉन्ग्स थे राहुल देव बर्मन, यानी कि आरडी बर्मन की कॉम्पोजिशन थी. द फिल्म वॉज अ वेरी पॉपुलर फिल्म, इसमें जो है सुपरहिट हुई थी. इसके जो कमर्शियल सक्सेस था वो बहुत अच्छा हुआ था. दिस केम आउट इन 1972. द हिंदी बॉलीवुड वर्जन ऑफ द साउंड ऑफ म्यूजिक. इसमें जया जी का भी रोल था. वो ऑफ कोर्स दीदी जो बात कर रहे हैं, वो शी प्लेज द एल्डर सिस्टर ऑफ दिस बंच ऑफ किड्स जिनके लिए जितेंद्र जी के कैरेक्टर को हायर किया है. थैंक यू सो मच टू ऑल द लिसनर्स. 972-235-5555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. और आप अपने दिल का हाल सुना सकते हैं, यानी कि टेल मी कि आप आज कौन सा सॉन्ग सुनना चाहेंगे. 972-235-5555.

0: ये वही मूवी है, ये वही फिल्म है जिसने सोवियत यूनियन में अपना जो है नाम बहुत कमाया था। ब्लॉकबस्टर तो ये इंडिया में हुई थी, लेकिन सोवियत यूनियन में इस मूवी को बेहद पसंद किया गया था। और जहाँ पर ये एक जो सॉन्ग था, मेरा जूता है जापानी, घर घर में उसको वो जो है सुनाई देता था। सो दिस इज़ द फिल्म दैट केम आउट इन 1955, एक आइकॉनिक क्लासिक मैसिव सुपरहिट फिल्म श्री 420। राज कपूर साहब का कैरिश्मा इतना वाइड एंड स्प्रेड हो चुका था इस फिल्म के साथ। एंड एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है इस फिल्म की कि ऋषि कपूर साहब वॉज 3 years ओल्ड व्हेन दिस फिल्म केम आउट, एंड ही मेड अ वेरी यूनिक एंड इंटरेस्टिंग डेब्यू थ्रू दिस फिल्म, जहाँ पर वो प्यार हुआ इकरार हुआ में वो जो तीन बच्चे चलते हुए आ रहे हैं उसमें से एक जो है वो ऋषि कपूर साहब। इनफैक्ट उनके जो बाकी दो सिबलिंग्स रणधीर कपूर एंड ऋतु कपूर, वो भी दोनों इस गीत में एंड इस फिल्म में नजर आए थे।
1: दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात ना मिर्च मसाला कह के रहेगा कहने।
0: सोवियत यूनियन में तो इतनी इसकी मार्केट हो गई थी इस फिल्म की, राज कपूर साहब की जो पॉपुलैरिटी है स्पेशली अराउंड दैट एरिया जस्ट ग्रू सो मच इन एक्सटेंट दैट इट वाज जस्ट अनबिलीवेबल। इसमें राज कपूर साहब ने थोड़ा अपना चार्ली चैपलिन टाइप एक कैरेक्टर जो है लुक अलाइक वैसा फॉर्म किया था, एंड आई थिंक दैट इज़ वॉट कॉट द अटेंशन एंड मेड हिम सो पॉपुलर। सो थैंक यू सो मच, आप सबके इतने अच्छे सॉन्ग्स हैं जिनकी फरमाइश आ रही है। 972-235-5555, ये जो अगला सॉन्ग है जिसकी रिक्वेस्ट आई है, फिल्म का नाम आई थिंक है सवेरे का सूरज तुम्हारा, या आई थिंक मूवी का नाम है एक बार मुस्कुरा दो, एंड गीत के बोल हैं सवेरे का सूरज तुम्हारा। लेट्स हियर। सो इट्स ईदर ऑफ द टू, एक बार मुस्कुरा दो। सो सवेरे का सूरज तुम्हारे लिए इज़ द नेम ऑफ द सॉन्ग, एंड फिल्म का नाम है एक बार मुस्कुरा दो।

0: आगे से सोती रातों में आगे से मिली।
1: जब भी कोई डायरेक्टर या एक्टर जब कोई फिल्म बनाते हैं तो उनको पूरी एक होप होती है और काफ़ी कॉन्फिडेंस होता है कि उनकी फिल्म जो है बहुत चलेगी। हाउएवर ऑन द कॉन्ट्ररी, जब ये फिल्म बनी और रिलीज़ होने वाली थी, हो रही थी, तो किशोर कुमार साहब को था कि अरे ये तो एक कहीं फ्लॉप फिल्म बनी है। उनको इतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं थी इस फिल्म से, एंड उन जो इस फिल्म का जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल ही विपरीत था। यानी कि ये फिल्म कमर्शियली इतनी मेजरली सक्सेसफुल रही एंड जो है काफ़ी सक्सेसफुल काम रहा बॉक्स ऑफिस पर। एंड ये तीनों भाई किशोर कुमार, अनूप कुमार एंड अशोक कुमार तीनों ही थे इस फिल्म में। एंड जब ये फिल्म रिलीज़ हुई लोगों ने इसको बहुत पसंद किया, एंड कॉन्ट्ररी टू व्हाट किशोर कुमार हैड थॉट अबाउट दिस फिल्म बीइंग फ्लॉप एट द बॉक्स ऑफिस, actually this film became a commercially majorly successful film at the box office. So ye film ka naam Chalti ka naam Gaadi 1958 mein aayi thi. Ye film comedy bhi thi aur musical bhi thi, isme Madhubala ji bhi thi. Agar wo hongi to definitely ऑन स्क्रीन जो प्रेजेंस होगी उनकी वो ऑडियंस को बहुत ही पसंद करेगी, बिकॉज शी इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री। तो जब बड़े पर्दे पर इनको लोगों ने देखा तो वो बहुत मेस्मराइज हो गए इनकी ब्यूटी से, तो ऑलरेडी थे ही। इस फिल्म के साथ उन्होंने इनको और भी ज़्यादा, मधुबाला जी को और भी ज़्यादा प्यार दिया। सो दिस इज़ द वन दैट्स कॉल्ड चलती का नाम गाड़ी। उसी फिल्म का हम ये सॉन्ग सुन रहे थे, किशोर कुमार साहब इस फिल्म में सॉन्ग में एंड ऑल्सो मधुबाला जी। टाइम हो रहा है ब्रेक का, तो अब मैं कोई और नया दूसरा सॉन्ग तो नहीं प्ले करूंगी, बट यू आर वेलकम टू कॉल मी ड्यूरिंग द ब्रेक। 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो। मैं आरजे एकरूप यहाँ पर 10 बजे तक हूँ, शो पेश कर रही हूँ संडे गपशप। टाइम हो रहा है ब्रेक का, बस मैं अभी गई और अभी वापस आई।
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
3: Official tax and finance partner, AG FinTax.
2: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: In association with Passion Health Primary Care.
4: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
5: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
6: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
7: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
9: कौन सा?
8: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
9: अरे सारे तो सेम है।
8: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
9: ओ हाँ, ये तो अलग है।
10: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
12: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin hai. लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
13: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
10: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
12: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
14: Are you on F1 visa and looking for mortgage options? Ya aap H1B pe hain and looking options with 5% or 10% or even 3% down. So call kijiye Kamna ko at 214-845-4189 kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
15: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
16: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध।
17: Astrology readings for guidance only and results may vary.
18: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
19: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from three convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.

Welcome back. You are tuned into 104.9 FM Phanesia Radio. मैं हूँ आपकी host RJ Krupp. आपके लिए ये शो लेकर आई हूँ जिसका नाम Sunday Gupshup on 104.9. ये अगला song जिसकी request आई हुई है 972-235-5555 is the number to the studio.

लाइक ऑनेस्टली मैं नहीं जानती किसी को जिनको ये वाला सॉन्ग हंसता हुआ नूरानी चेहरा ना पसंद आता हो, चाहे वो कितनी भी कौन से भी डेकेड के बॉर्न हो, कितने भी उम्र के हों, चाहे वो न्यूअर जनरेशन हो, चाहे वो ओल्डर जनरेशन हो, और इसी सर्टन सॉन्ग के हंसता हुआ नूरानी चेहरा के तो कुछ रिप्राइज्ड एंड रीमिक्स्ड वर्जन्स भी आए हुए हैं, एंड वो भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो ओरिजिनल की बात है वो तो डेफिनेटली अनबीटेबल, अनमैचेबल एंड जस्ट आउटस्टैंडिंग। ये लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूज़िक LP, जो कि इतने पॉपुलर म्यूज़िक कंपोजर्स रहे, लता जी ने और कमल भरोत जी ने इस सॉन्ग को गाया। पारस मणि फिल्म का नाम एंड 1963 का ये सॉन्ग है, और आज भी मुझे जब ये सॉन्ग प्ले हो रहा था, कुछ कॉलर्स ने कॉल करके कहा कि इतना अच्छा प्यारा सॉन्ग। यस इट इज़।

ये जो mid-90s में जो इतनी ब्लॉकबस्टर मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म आई थी, हम हैं आप, हम आपके हैं कौन, उसमें जब ये पूरी फैमिली अंताक्षरी खेलते हैं, तो आई थिंक आपको याद होगा कि ये वाला सॉन्ग ऑन द बैकग्राउंड चलता है जब वो जो कुशंस को पास अराउंड करते हैं, एंड देन जिस पे सॉन्ग रुकता है तो फिर उनको एक सो कॉल्ड क्वोट एंड क्वोट एक पनिशमेंट दी जाती है. दैट इज़ व्हाट द पासिंग द पार्सल गेम, जब वो खेलते हैं तो उसके बैकग्राउंड में भी यही सॉन्ग चल रहा होता है. सो दिस सॉन्ग इज़ सो कैची, सो मैग्निफिसेंट एंड सो लवली. अच्छा, अब यहाँ से हम जो है इस सॉन्ग की तरफ बढ़ते हैं. जो फिल्म का नाम है सूरज, उस फिल्म का गीत है, एंड इतना है तुमसे प्यार मुझे, रिक्वेस्टेड सॉन्ग है. सो हियर यू गो.

July 4th जो लॉन्ग वीकेंड है वो बस अभी कह सकते हैं कि ख़त्म हो रहा है, बिकॉज़ फ्राइडे वाज ऑफ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. टुमारो इज़ मंडे, तो अभी जो है बैक टू वर्क, बैक टू आवर यूजुअल रूटीन. लॉन्ग वीकेंड ऐसे आते रहें तो अपने आप जो है रिजुविनेशन होती रहती है. आप डी स्ट्रेस कर लेते हो अपने आप को, बिकॉज एक एक्स्ट्रा छुट्टी मिल जाती है, स्पेशली फॉर द वंस दैट हैव टू ड्राइव टू गो टू वर्क. शायद वर्क फ्रॉम होम वालों को भी उतना ही अच्छा लगता हो, लेकिन जो ड्राइव करके जाते हैं, जो कहीं अदर लोकेशन पर जाते हैं काम करने, तो उनके लिए जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात कर रही हूँ, तो हमें एक एक्स्ट्रा डे मिल जाता है ना ड्राइव करने का. सो दिस वाज द 250th एनिवर्सरी ऑफ अमेरिकाज इंडिपेंडेंस. 250 साल हो गए हैं, एंड बहुत बड़ा एक ये माइलस्टोन है, लैंडमार्क है यूएस हिस्ट्री में. यूएस के लिए 1776 में, वेल नो लॉन्ग टाइम अगो, 1776 में तो 200 ईयर्स हुए होंगे. सो ये जो है 250 ईयर्स मनाए. 1776 जो है इंडिपेंडेंस, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस जो है उसको साइन किया था. यस, 4th of July, एंड अब जो है 250 ईयर्स हो गए. बहुत ही ग्रैंड फायरवर्क डिस्प्ले हुआ, प्रेसिडेंशियल एड्रेस भी हुआ आज बोलकल, एंड जो है फीफा का वर्ल्ड कप भी चल रहा है, तो उसका फीवर भी बहुत ज़ोरों शोरों से है. सो सेवरल थिंग्स गोइंग ऑन, एंड देन टेलर स्विफ्ट की जो शादी फ्राइडे को हुई, July 3rd, जो मच टॉक्ड अबाउट आई गेस न्यूज़ रही. 1,000 गेस्ट्स अटेंडेड देयर वेडिंग. इट वॉज अ ग्रैंड वेडिंग इन न्यूयॉर्क. टेलर स्विफ्ट एंड ट्रैविस केल्सी, सो TNT गेटिंग मैरिड ऑन July 3rd. July 4th डेफिनेटली, ऑब्वियसली 250 ईयर्स ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस फॉर United States, एंड ऑल्सो फीफा जो अभी राउंड 16 जो चल रहे हैं नॉकआउट. सो मैनी थिंग्स गोइंग ऑन, पॉलिटिक्स, न्यूज़ एंड स्पोर्ट्स, एंड ऑल्सो सेलिब्रेटोरी. सो July 4th, 5th है आज, फर्स्ट वीकेंड है, फर्स्ट संडे है इस महीने का, एंड इस महीने में 4 संडेज हैं, मीनिंग 3 और संडेज आने वाले हैं, तो 3 बार एटलीस्ट मेरी आपसे और मुलाकात होगी, बिकॉज मैं हफ्ते में एक दिन ही आती हूँ संडे को 7 to 10, एंड दैट इज सच अ चेरिश्ड टाइम फॉर मी, एंड आई होप दैट यू ऑल्सो एन्जॉय द टाइम दैट आई एम हियर bringing to you songs of your choice and somewhat few here and there of my own choice. Ye agla song requested song hai.

0: फिल्म का नाम बॉबी, इसमें डिम्पल कपाडिया का नाम बॉबी होता है और ये फिल्म इतनी मैसिवली सक्सेसफुल रही फॉर मेनी मेनी थिंग्स. ऑफ कोर्स द गुड लुक्स ऑफ बोथ द एक्टर्स, द यंग एक्टर्स, द यंग ब्लड. और ऋषि कपूर तो क्योंकि इतने कपूर खानदान, इतनी लेगेसी वाले खानदान को बिलोंग करते हैं उनका चिराग. सो ये उनकी डेब्यू फिल्म थी एंड वेल एज एन अडल्ट एक्टर. एंड देन उसमें फिर एक बहुत ही क्यूट सी एक्ट्रेस से डिम्पल कपाडिया का भी डेब्यू हुआ, जो उस टाइम पर शी मैच्ड वेरी वेल विद ऋषि कपूर. और ये फिल्म जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए पॉपुलर हो गई थी. एक तो जो प्रेम चोपड़ा साहब का डायलॉग था, प्रेम नाम है मेरा प्रेम चोपड़ा, वो भी इसी के साथ बड़ा पॉपुलर हुआ था. देन बॉबी बाइक जो है, जिसको राज कपूर ने, वॉल ऋषि कपूर ने जो चलाया था इस फिल्म में, तो उसको बॉबी बाइक के नाम से जानते थे. दैट वाज एक्चुअली द राजदूत बाइक, पर उसको कंट्री में प्यार से बॉबी बाइक कहा जाता था. एंड ऑल्सो बॉबी डॉट्स, बॉबी प्रिंट, जो कि एक पोल्का डॉट वाले जो आउटफिट पहना था डिम्पल कपाडिया ने, सो दैट बिकेम द बॉबी प्रिंट, जो कि एक क्रॉप टॉप था एंड उसको जो है ब्लैक मिनी स्कर्ट के साथ. सो द बॉबी द पोल्का डॉट्स गॉट कलोकली नोन एज द बॉबी प्रिंट. सो दीज वर द थिंग्स दैट बिकेम सो पॉपुलर विद द नेम ऑफ द फिल्म. इस फिल्म का बहुत ही इम्पैक्ट था यंग जनरेशन पर. यूथ तो बिल्कुल ही, जिसको कहते हैं ना, पागल हो गए थे इस फिल्म को देखकर. एंड बहुत ही हाई स्टाइल वाली, हाई फैशन वाली ये फिल्म, इसके कॉस्ट्यूम्स. आई बी राइट बैक. ब्रेक का टाइम हो रहा है, 10 बजे तक मैं स्टूडियो में हूँ.
1: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है.
2: हाँ, देख लेंगे.
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
2: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस. PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को. PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलसिस न्यूएस्ट.
4: जीनी, हुकम मेरे आका, हम आज पार्टी के मूड में हैं. एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो.
5: मिराज लाउंज, चलिए मेरे आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में है.
6: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं.
5: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए.
6: और एंटरटेनमेंट,

0: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
1: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
0: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
4: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
4: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो।
7: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
8: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
7: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
8: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
4: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
9: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
4: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
9: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
10: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
11: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
10: सच में सब संभाल लेंगे?
11: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770। Vanessa Events, your celebration partner.
12: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

Welcome back, Sunday Gupshup, 972-235-5555, 104.9 FM Fanisha Radio, and I am your host, RJ Ekrop. I welcome you to the show. We have reached the midway. That means 1.5 hours has passed and 1.5 hours has remained. Until 10 o'clock, Sunday ke Sunday, I come here and take Sunday Gupshup for you. Some things happen on air, off air, and just general Bollywood, nice songs, nice music, nice movies, and the versatile and talented actors about whom we talk about on this show. Aap call karke zarur Gupshup kar sakte hain mere saath. Agar koi song sunna hai to wo bhi aap mujhe bata dijiye. I'm happy to play. In fact, सारे सॉन्ग्स आप ही की चॉइस के होते हैं, रिक्वेस्टेड सॉन्ग्स होते हैं. सो दैट इज़ हाउ द शो फ्लोज एंड गोज. तीन घंटे कहाँ जाते हैं पता भी नहीं चलता. दिस पार्ट ऑफ माय शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म्स इन द यूएस. दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस. दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर. दिस इज AG Fintechs, 469-942-9888, or you can visit their website, which is agfintechs.com. अगला सॉन्ग, लाइक आई ऑलवेज से, इतने अच्छे सॉन्ग्स आप रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे इन सॉन्ग्स को प्ले करने में बहुत मज़ा आता है, सुनने में बेहद मज़ा आता है. एंड जो इस शो को चार चांद आप के अच्छे अच्छे सॉन्ग्स लगा देते हैं वो तो एक बहुत ही डिफरेंट लेवल के हैं. फॉर एग्जांपल दिस वन, बीना जी, दिस इज़ फ्रॉम यू फॉर यू.

ये फिल्म इतनी लैंडमार्क फिल्म रही इंडियन सिनेमा, इंडियन बॉलीवुड इंडस्ट्री, इंडियन हिंदी बोल हिंदी सिनेमा के लिए और बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा लैंडमार्क एंड माइलस्टोन बन के रह गई. एक तो ऐसी फिल्में वापस से नहीं बनती, दे आर इनएमरेबल. और फिर ये जब फिल्म रिलीज़ हुई थी तो आई थिंक शायद ये सबसे पहली एंड ओनली फिल्म है, आई डोंट नो इफ इट्स द ओनली फिल्म सो फार, लेकिन सबसे पहली तो डेफिनेटली थी जब इसको बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर एंड बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला. और फिर ये आगे चलकर जो है इंडिया की तरफ से ऑस्कर में भी ऑफिशियली इसको नॉमिनेट किया गया. सो ये जो है इतनी पॉपुलर फिल्म रही और इतनी यूनिकली मेड थी ये फिल्म. गाइड, जिसका हम ये सॉन्ग सुन रहे थे, केम आउट इन 1965. इसके म्यूज़िक को सुन के नहीं लगता कि इतनी पुरानी फिल्म है. इसके ऑडियो, इसका वीडियो, इसका कुछ भी देख के ऐसे नहीं लगता कि इतनी पुरानी फिल्म होगी. इतनी अच्छी, इतनी क्लासिक फिल्म बनी एंड टॉप 100 बॉलीवुड फिल्म्स में इसका नाम तो आता ही है कि मस्ट वॉच हूँ है ये फिल्म. थैंक यू बीना जी, आपने इसकी रिक्वेस्ट की एंड जैसे ही मैं ये सॉन्ग बस अभी प्ले किया था तभी मुझे एक और कॉलर का फ़ोन आया अर्जुमन जी का, एंड उन्होंने मुझे कहा कि आप ना रेडियो छोड़कर आप जो है फ्यूचर प्रिडिक्ट करने लग जाइए. तो मैंने सोचा पता नहीं क्यों वो मुझे ऐसे कह रही हैं, तो मैंने कहा तो मुझे प्रॉपरली नहीं सुनाई दिया. तो मैंने कहा एक्सक्यूज़ मी, आपने क्या बोला, मुझे सुनाई नहीं दिया. तो वो कहती हैं आप ना ये रेडियो का काम छोड़ दीजिए और आप फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर बताते हैं वो कर लीजिए. तो मुझे हंसी आ गई, मैंने कहा क्यों, कहते कि मैंने कॉल इसी कॉल किया था आपको कि मैं सॉन्ग रिक्वेस्ट करूँगी एंड जैसे ही आपने प्ले किया तो वो तो वही सॉन्ग निकला जिसके लिए मैंने रिक्वेस्ट करनी थी आपको कि आप प्ले कीजिए, विच वॉज दिस सर्टन वन, आज फिर जीने की तमन्ना है. सो थैंक यू, आप सब इतना इस सॉन्ग को पसंद करते हैं, इस फिल्म को पसंद करते हैं एंड ऑफ कोर्स वहीदा रहमान जी द मोस्ट पॉपुलर, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एक्ट्रेसेस इन द इंडस्ट्री एंड हर टैलेंट इज जस्ट सो वर्सेटाइल. अब जो अगला सॉन्ग है वो है ये वाला, मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में जॉनी वॉकर जी पर फिल्माया गया.

हमारी एक कॉलर हैं जो अभी ड्राइव कर रही हैं, एंड शी सेड कि आप इस सॉन्ग के बाद ये वाला सॉन्ग जो है उनका पसंदीदा वॉल फॉर राइट नाउ, उन्होंने अभी उसकी रिक्वेस्ट की है। दिल्ली की जो फर्स्ट एंड ओनली फीमेल रूलर थी रज़िया सुल्तान, उन पर ये फिल्म बनी थी, एंड आई थिंक ये वही वाली फिल्म है जिसको कमाल अमरोही साहब ने बनाया था। बड़ा अच्छा सॉन्ग है, मैंने अभी ब्रीफली क्विकली जस्ट फॉर अबाउट अ फ्यू सेकेंड्स 20-30 सेकेंड्स मैंने सुना है, तो अच्छा लगा। लता जी की आवाज़ है तो डेफिनेटली बहुत कैची एंड नाइस एंड म्यूजिकल होगी। तो चलिए ये लीजिए आपके लिए सॉन्ग, फिल्म का नाम रज़िया सुल्तान।

ये म्यूजिक आपको सुन के पता ही चल गया होगा कि किस कंपोजर की ये कंपोजिशन है. जी हाँ, खयाम साहब एंड लता जी की आवाज़. वेरी टिपिकल खयाम साहब्स म्यूजिक, जैसे उमराव जान में था या और भी. उन्होंने कितनी सारी अच्छी फिल्मों में उनको बहुत ही अच्छा म्यूजिक दिया है. कमाल अमरोही की फिल्म है ये. उनका ये सपोजिटली ड्रीम प्रोजेक्ट था एंड इट टुक अबाउट 7 ईयर्स टू ब्रिंग दिस टू द ऑडियंस. काफ़ी इसमें मेहनत गई थी, काफ़ी पैसा भी लगा था और सोच समझ कर इतनी अच्छी डिफरेंट कलेबोरेशंस करके ये फिल्म बनाई थी, रज़िया सुल्तान, दैट केम आउट इन 1983. हाउएवर, जब ये फिल्म बड़े पर्दे पर आई तो काफ़ी डिजास्ट्रस इसका रिजल्ट रहा. लोगों ने इस फिल्म को बिल्कुल पसंद नहीं किया फॉर वॉट एवर रीज़न. आई गेस 80s का ये दौर था जिसमें मूड एंड माहौल बहुत फ़र्क था सोसाइटी का, लोगों का, एंड शायद इसीलिए ये फिल्म इतनी लोगों ने पसंद नहीं की. मे बी इट डिडन गो डाउन टू वेल विद द ऑडियंस टेस्ट, बट गाना बहुत अच्छा है. एंड गाने अगर लता जी गा रही हैं तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू स्टैंड आउट. सो थैंक यू हमारी लिसनर जिन्होंने इस सॉन्ग की रिक्वेस्ट की. विजनरी आई केयर जो कि हमारी कम्युनिटी में अवेलेबल है, दे आर इन प्लेनो. इट्स कॉल्ड विजनरी आई इन प्लेनो. If you are thinking about getting your LASIK done, which is the vision correction, and you can get rid of your glasses and contacts, so Visionary Eye Care is the place to go. LASIK is just one of several vision correction options available today. Dr. Shehzad Batliwala, a fellowship-trained eye surgeon and founder of Visionary Eye in Plano, his approach is simple. Educate first so that you can make the best decision for your eyes with confidence. To learn more about your options and to see if you are a perfect candidate for LASIK, you can call Dr. Batliwala at 214-972-2020 or you can visit their website, which is LASIK-plano.com. Jee haan, Visionary Eye Care, if you know that you are in good hands, like Dr. Shehzad Batliwala, then the confidence is definitely higher. It is an educated decision क्योंकि आईज को लेजिक के नीचे लेके जाना है, टेक्स लॉट्स ऑफ गट्स. तो फिर अगर आप एजुकेटेड होंगे, एंड डॉक्टर शहजाद बाटलीवाला विल डेफिनेटली एजुकेट यू एंड आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस एंड योर डाउट्स एंड कंसर्न्स. टू लर्न मोर अबाउट दिस यू कैन कॉल at 214-972-2020. And also, if you want to get your 2020 perfect free consultation, then you can mention Fun Asia 2020 to receive a free consultation by Dr. Shehzad Batliwala at Visionary Eye Care. Agla song jo hai na wo डिम्पल कपाडिया की सिस्टर जो सिंपल कपाडिया, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था राजेश खन्ना साहब के साथ. सो हियर यू गो, दिस इज द वन.

0: तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
2: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
3: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
4: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
3: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
5: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
6: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
7: Hello Texas Parivar. Where do you go when bank says no? Are you self-employed? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
8: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी, अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में। सोना मसूरी राइस, नानक पनीर, पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ, वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं, और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहाँ पसंद है। अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स, मिड सिटीज, अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं। तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स। HEB, हियर एवरीथिंग इज बेटर।
9: बेटा, 95% आए?
10: हाँ मम्मी।
9: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
12: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
13: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
14: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
15: Hi, I'm Rajkumar Rao and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM. Fun Asia Radio.

Welcome back. You are tuned in to 104.9 FM Fun Asia Radio. This is RJ Ikru welcoming you all once again. 972-235-5555 is the number to the studio. Please keep the calls coming in. ये वाला song तो मुझे अब लगता है कि Father's Day पर मुझे play करना चाहिए था. Daddy Cool, the very classic evergreen song sung by Boney M. Daddy Cool. अभी जो है शो में अबाउट 50 मिनट्स और बचे हुए हैं एंड इस 50 मिनट्स में एक गिव अवे है मेरे पास फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से एंड देन अ कपल ऑफ एडवर्टाइजमेंट्स और मैसेजेस आई कैन से फ्रॉम आवर स्पॉन्सर्स और फिर उसके अराउंड आल्सो एक ब्रेक आएगी 9:30 पे एंड देन मुझे सॉन्ग्स भी प्ले करने हैं आपकी चॉइस के सो अगर आपने अभी तक नहीं कॉल किया है There is still time left. 972-235-5555 is the number to the studio. And you can tell me what song you would like to listen to. Ye wala song sunte hai. Pukar film ka hai. And then iske baad main aap se giveaway ka question bhi poochungi. So just stay tuned in to 104.9 FM. Fun Asia Radio. Phone number is 972-235-5555.

Turn of the century में आई थी ये फिल्म ईयर 2000 एंड ए आर रहमान का आइकॉनिक म्यूजिक ऑफ कोर्स यू कैन आइडेंटिफाई इट ऑफ कोर्स यू कैन टेल दैट दिस वर्क कैन इज नन अदर देन ए आर रहमान. नम्रता शिरोडकर, अनिल कपूर एंड माधुरी दीक्षित की ये सुपरली हिट फिल्म जिसका नाम पुकार, इसमें जो है आर्मी ऑफिसर का रोल प्ले करते हैं अनिल कपूर एंड देन इवेंचुअली उनका कोर्ट मार्शल होता है बिकॉज ऑफ सम थिंग्स दैट लीक आउट द क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन एंड वो करने वाली होती हैं माधुरी दीक्षित. सो शी प्लेज काइंड ऑफ एन एंटागनिस्ट रोल ऑल्सो इन दिस फिल्म. बहुत अच्छी फिल्म बनी थी एंड राजकुमार संतोषी ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया था. राजकुमार संतोषी के साथ अनिल कपूर एंड माधुरी ने पहले भी काम किया हुआ है एंड दिस वॉज अनदर फाइन पीस ऑफ वर्क दैट दे ऑल केम टुगेदर टू परफॉर्म. इसमें प्रभु देवा की कोरियोग्राफी एंड उन्हीं के साथ माधुरी ने डांस किया. बहुत ही अच्छी पिक्चराइजेशन, बहुत अच्छा सॉन्ग, बहुत अच्छी कोरियोग्राफी एंड द म्यूजिक ऑफ कोर्स बाय ए आर रहमान स्टैंड्स आउट. चलिए अब मैं आपको गिव अवे के बारे में बता देती हूँ एंड देन आई हैड टोल्ड यू दैट देर इज़ गोइंग टू बी अ क्वेश्चन फॉर गिव अवे. बहुत आसान सा सवाल है बट लेट मी जस्ट टेल यू फर्स्ट व्हाट द गिव अवे इज ऑल अबाउट. इफ़ यू आर क्रेविंग फॉर समथिंग चीज़ी बट विद अ टेस्टी ट्विस्ट देन यू डोंट हैव टू गो फर्दर. फन पिज़्ज़ा किचन इज अवेलेबल फॉर यू. एन्जॉय द फ्रीडम फीस्ट फॉर जस्ट $30.99. फ्रीडम फीस्ट इसलिए बिकॉज जुलाई 4th इंडिपेंडेंस डे वाला जो वीकेंड है उसमें ये फ्रीडम फीस्ट का एक स्पेशल डील चल रही है $30.99. और यू कैन इवन गो बिगर विद द लिबर्टी फीस्ट फॉर जस्ट $35.99 विच इंक्लूड्स मीडियम सिग्नेचर पिज्जा, लार्ज चीज ब्रेड एंड योर चॉइस ऑफ चीज केक और टिरामिसू ऑफ योर चॉइस विद योर चॉइस ऑफ लार्ज फ्राइज और 5 काउंट ऑफ विंग्स. तो ये तो वाकई बहुत ही फीस्ट वाला प्लेटर लग रहा है एंड दिस डील इज ओनली फॉर डाइन इन पर्पजेज. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस गिव अवे इन दिस काइंड ऑफ अ डील विच इंक्लूड्स फ्रीडम फीस्ट और लिबर्टी फीस्ट तो फिर आप जरूर डाइन इन कीजिए. funpizzakitchen.com इज द इंफॉर्मेशन वो इज द वेबसाइट वेर यू कैन ऑब्टेन मोर इन्फॉर्मेशन. ओके नाउ आई एम रीडिंग इन बिटवीन द लाइंस. ये तो जो है डील चल रही है जुलाई 4th, लेकिन ये जो गिव अवे है इसमें आपको क्या मिलेगा? यू विल गेट वन लार्ज पिज्जा ऑफ एनी फ्लेवर फ्रॉम द मेन्यू दैट इज अवेलेबल एट फन पिज्जा किचन. सो आप ये गिव अवे के लिए मुझे सही जवाब दे दीजिए एंड इफ यू आर द फर्स्ट कॉलर गिविंग मी द राइट आंसर देन यू कैन विन दिस गिव अवे विच इंक्लूड्स वन लार्ज पिज्जा ऑफ एनी फ्लेवर फ्रॉम द मेन्यू एट फन पिज्जा किचन. अच्छा अभी क्वेश्चन मेरा आपसे ये है 972-235-5555 तो आप जानते ही हैं. अच्छा आपको मुझे बताना है 5 फिल्म्स दैट हैव बीन डायरेक्टेड बाय गुलजार साहब. वेरी इजी क्वेश्चन बट आई वांट यू टू टेल मी नेम्स ऑफ 5 फिल्म्स दैट हैव बीन डायरेक्टेड बाय गुलजार साहब. तो आप मुझे बता दीजिए एंड देन यू विल विन वन लार्ज पिज्जा बाय फ्रॉम फन पिज्जा किचन. सो नेम्स ऑफ 5 films, 5 movies that have been directed by Gulzar Sahab.

0: So the giveaway question is that you have to tell me the names of five films or five movies that have been directed by Gulzar Sahab. He has done a vast amount of work in terms of music, in terms of films, in terms of everything behind the screen. So you have to tell me the names of five films that have been directed by Gulzar Sahab.
1: Whatever.
2: पहली बार देखा है ऐसा अजनबी ना अजनबी.
0: Good morning, Fanisha. How are you? Are you calling in for the giveaway?
3: Yes. Is it already been answered?
0: No. So tell us your name first, and then we can go ahead with your answer.
3: Yes. My name is Shivani.
0: Shivani, ठीक है. तो Shivani, आपको मुझे बताना है फिल्मों के नाम, five films that have been directed by Gulzar Sahab.
3: बिल्कुल. So one is my all-time favorite Ijazat movie.
0: Which one is that? Ijazat. Okay.
3: Ijazat.
0: हाँ जी.
3: Matches. And आंधी.
0: Matches उन्होंने की थी. हाँ जी. Yes. And आंधी. Okay. आंधी. Yes.
3: And कोशिश. Is was one movie, old movie, and Angoor.
0: ठीक है. तो इनमें से आपने कौन सी देखी है?
3: मैंने इजाजत तो देखी है बिल्कुल.
0: अच्छा, वो आपकी फेवरेट है. And then what about कोशिश?
3: No.
0: आपने कोशिश नहीं की मूवी कोशिश देखने की? बिल्कुल कोशिश नहीं की.
3: अब करूंगी जरूर इंटरेस्ट से.
0: हाँ ठीक है. और आपने कौन सा बताया, कौन सी बताई मुझे? आंधी.
3: आंधी.
0: हाँ जी.
3: माचर. अंगूर.
0: एंड इजाजत.
3: एंड एंड इजाजत.
0: ठीक है, तो हो गई पांच. ठीक है, चलिए. सो यू आर द विनर. एंड आपने बिल्कुल बिल्कुल मुझे ठीक सही जवाब दिए. और अब आप कोशिश जरूर देखना, बहुत अच्छी मूवी.
3: बिल्कुल आज ही देखूंगी.
0: हाँ, मिस मत करना.
3: हाँ,
0: मूवी देखने के बाद देन हेड ओवर टू फन पिज्जा किचन बिकॉज यू हैव वन दिस गिव अवे विच इंक्लूड्स वन लार्ज पिज्जा ऑफ एनी फ्लेवर ऑफ योर चॉइस फ्रॉम द मेन्यू दैट दे हैव एट फन पिज्जा किचन.
3: Awesome. Thank
0: okay.
3: you for making
0: so,
3: weekend.
0: Yeah, awesome. So, aap yahi rahiye. I'm going to speak to you on air, well, off air, yes. And I'll tell you how you can go to this restaurant and how you can claim this prize. Okay? So, yahi rahiye.
3: Sure. Yeah. Yes.

0: are you?
1: Master ji ki aa gayi chitti chitti mein.

0: में बत्ती, कान में झुमका, नाक में बत्ती, हाथ में जलती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगर

0: मगरबत्ती अगरबत्ती।
1: अरे नहीं यार, मगरबत्ती। अरे बोला ना अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती, मगरबत्ती, अगरबत्ती।
0: अगरबत्ती का छुआछा आग पे बैठा पानी ताप। अगरबत्ती का छुआछा

0: का झाड़ पूंछ पे लेकर चले पहाड़। पहाड़ पे बैठा बूढ़ा जोगी, जोगी की एक जोगन होगी।
1: ये सॉन्ग मैं इसलिए सुनवा रही हूँ बिकॉज ये फिल्म है किताब जो आई थी 1977 में, संपूर्ण सिंह कालरा। हम बात करें गुलजार साहब की, जिन्होंने 1960 से अपना हिंदी फिल्मों के साथ का सफ़र शुरू कर दिया था। लिरिसिस्ट के तौर पर उन्होंने बहुत सारी फिल्मों के लिए डायलॉग्स लिखे, लिरिक्स लिखे, एंड देन 1971 में उन्होंने सबसे पहली अपनी डायरेक्टेड फिल्म जो थी मेरे अपने बनाई, एंड देन परिचय That came out in 72. Koshish also came out in 72. Achanak, and then phir Aandhi, Khushboo, Mausam, or Kinara, Kitab. Both of these films came out in 1977. Meera, 1979. और फिर अंगूर, नमकीन, एंड देन इजाज़त, लेकिन, माचिस, दैट केम आउट इन 1996. हुतुतु जो आई थी 1999 में। इसके उसके बाद से इन्होंने कोई फिल्म डायरेक्ट नहीं की है, बट हिज नेम इन द इंडस्ट्री इज सो वेल नोन। उन्होंने इवन अभी 2026 तक भी जो फिल्म ओ रोमियो जो अभी रिलीज हुई थी उसके लिरिक्स लिखे थे। सो व्हाट अ ग्रेट पर्सनालिटी, व्हाट अ ग्रेट टैलेंट। संपूर्ण सिंह कालरा इनका रियल नेम, गुलजार साहब जिन्होंने हिंदी फिल्मों के साथ जो इनका नाता है बहुत बहुत इनका रिश्ता नाता बहुत बहुत पुराना है। राखी जी इनकी वाइफ हैं, एंड देन मेघना गुलजार इनकी बेटी। उन्होंने भी इनफैक्ट कुछ फिल्में बनाई हैं और अच्छी फिल्में डायरेक्ट की हैं। सो दिस इज गुलजार साहब फॉर अस। थैंक यू शिवानी, यू आर द विनर फॉर टुडेज गिव अवे, एंड आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू यू। यू नो हाउ टू क्लेम योर गिव अवे विच इज वैलिड टिल टुडे। कंग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू टू ऑल द लिसनर्स दैट हैव बीन ट्राइंग टू कॉल, बट हमें अपने विनर जो हैं मिल चुके हैं। टाइम हो रहा है ब्रेक का, तो अब 10 सेकंड्स बचे हैं, ब्रेक की तरफ हम बढ़ रहे हैं। नंबर आप याद रखें 972-235-5555। आई एम हियर इन द स्टूडियो, दिस इज आरजे एकरूप अंटिल 10 o'clock. आई बी राइट बैक।
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
4: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है, और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
5: तो पहनती क्यों नहीं हो?
4: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
5: तो रोज वाला ले लो।
6: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
7: Ye tera ghar, ye mera ghar.
8: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
9: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
8: I believe every home journey should feel exciting, stress

0: stress-free and truly special. Whether buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
1: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
2: भूख लगी
3: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
0: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट पेज 3 ईटरी. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
4: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू पेज 3, हब 121 मैकिनी.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
9: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
10: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
9: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.

0: शिवानी जी जो हैं जीती हैं फन पिज़्ज़ा किचन की तरफ से जो गिव अवे था आज वन लार्ज पिज़्ज़ा फॉर डाइन एंड ओनली दैट इज़ द ओनली क्लॉज दैट दे हैव कि अगर आप ये फन पिज़्ज़ा किचन का गिव अवे जीतते हैं तो आप टेक आउट नहीं कर सकते टू गो नहीं कर सकते आपको वहाँ पर बैठकर खाना होगा और वहाँ का जो एम्बियंस है जो माहौल है वो पूरा इन्जॉय करना होगा सो शिवानी कंग्रेचुलेशंस यू आर द विनर अब मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बता दूं कि ये वाले जो डॉक्टर्स हैं यहाँ पर जो प्रैक्टिस है इनकी ये आपके साथ पूरे पूरे 30 मिनट्स आपको स्केड्यूल करते हैं अपॉइंटमेंट मीनिंग कि आप 30 मिनट्स आपके पास मोर देन इनफ होता है टाइम आप अपने जो है हेल्थ को अंडरस्टैंड करें आपके प्रोवाइडर हेल्थ केयर प्रोवाइडर आपकी हेल्थ को अंडरस्टैंड करेंगे इन दीज 30 मिनट्स एंड बिकॉज फॉर देम यू आर not just a patient you are not just an ATM but you are a family for you your family and for the health of our community passion health primary care is available and they are also growing so they are hiring experienced primary care doctors endocrinologists pediatricians and psychiatrists for full-time and part-time opportunities so if you are passionate about patient care if you have the skills if you have the expertise definitely send your resume to passionhealthphysicians@gmail.com यहाँ पर आप अपना रेज्यूमे भेजें आप इनको कॉल भी कर सकते हैं 217-454-4639 और द अदर फोन नंबर इज 214-666-6259 passionhealthphysicians.com इज द वेबसाइट अगर आपने रेज्यूमे भेजना है तो passionhealthphysicians@gmail.com is the website, is the email address where you can send your resume. At Passion Health Primary Care, your health is their passion.
1: कहते हैं शादी करने का कोई सही वक्त नहीं होता। जब कर लो, बस तभी से तुम्हारा बुरा वक्त शुरू हो जाता है। अदिति, मेरे शेर, मेरे चीते, तुझे कुछ साल अकेला क्या छोड़ा? तूने इतना बड़ा झोल कर दिया बदतमीजी एक बीमारी है ऐसी बीमारी जो धीरे धीरे वक्त के साथ बुढ़ापे में बदल जाती है मैं कहता हूं जब तक बुढ़ापा नहीं आता थोड़ी बदतमीजी ही कर लेते

इतना हाई एनर्जी वाला सॉन्ग, ओह माय गुडनेस, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये. फिल्म ये जवानी है दीवानी आयान मुखर्जी की, यंग डायरेक्टर, यंग एक्टर्स, यंग स्टोरी एंड हाई एनर्जी म्यूज़िक. और ये म्यूज़िक दिया था प्रीतम ने, जो कि बहुत अच्छा म्यूज़िक क्रिएट करते हैं, कंपोज करते हैं, एंड डेफिनेटली इट स्टेज विद अस फॉर एवर एंड एवर. एंड आई थिंक ये जो सिंगर हैं बेनी दयाल, जो कि बड़ी एक इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है, जब भी आते हैं स्क्रीन पर या किसी रियलिटी शो पर तो एक अलग सा ही फ्लेवर अपने साथ लेकर आते हैं. रणबीर कपूर पर ये सॉन्ग फिल्माया गया, इसमें काल्कि कोकलन एंड दीपिका पादुकोण. इससे पहले दीपिका पादुकोण एंड रणबीर कपूर इकट्ठे बचना ए हसीनों में नज़र आए थे, उसके बाद इस फिल्म में नज़र आए. बहुत अच्छी फिल्म थी, आई वॉच्ड इट मल्टीपल टाइम्स और मुझे ये फिल्म काफ़ी पसंद आती है, बहुत अच्छी लगती है. इसमें काल्कि कोकलन का बहुत अच्छा रोल है. इनफैक्ट आदित्य रॉय कपूर ऑल्सो प्लेज अ प्रीटी डिसेंट रोल. एंड अच्छी फिल्म थी, फ्रेंडशिप के ऊपर थी, लव के ऊपर, एंड हाउ थिंग्स शेप, हाउ लाइफ चेंजेस एंड हाउ एवरीबडी मूव्स ऑन, एंड येट देर इज़ अ बॉन्ड दैट कीप्स देम ऑल टुगेदर अंटिल द एंड ऑफ द फिल्म. ये जवानी है दीवानी. विशाल एंड शेखर आ रहे हैं टाउन में, आई थिंक आपको पता ही है, संडे जुलाई 12th, जो कि अभी सिर्फ एक हफ्ता रह गया है. अगर आपने अभी तक अपनी टिकट्स नहीं ली तो ज़रूर cashpatelproductions.com kashpatelproductions.com पर टिकट्स अवेलेबल हैं, एंड इन फैक्ट दे आर ऑन सेल, सो डेफिनेटली गो ऑन टू दिस वेबसाइट. एंड अगर आप अपना कूपन कोड डालेंगे फन एशिया, कैप्सलॉक फन एशिया, आई थिंक the lower case or caps lock doesn't matter, but you have to put the word Fun Asia and you can get at least 30% discount on your tickets. Vishal Shekhar, who are a very well-known duo, composer duo, aur bahut acha kaam karte hain. Shekhar jo hain film mein bhi aaye the, Shekhar Avjiani Neerja film jo thi usme aaye the, and Vishal singer bhi hain aur composer bhi hain. So this is a very popular and successful jodi, Vishal and Shekhar. They will be coming to town on Sunday, July 12th at Curtis Culville Center in Garland. Tickets are now on sale at cashpatelproductions.com. If you use the coupon code FUNASIA, you can get 30% discount on your tickets. Vishal Shekhar ki hi ek ye wali composition thi, again on Ranbir Kapoor. Well, I shouldn't say again, because jo hum pehle ye badtameez jo dil sun rahe the, I know, ye Preetam ka music tha, but this one is Ranbir Kapoor also, but with Vishal Shekhar's music.

2008 में ये फिल्म आई थी जिसका नाम सिंग इज किंग, एंड बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सी फनी कॉमेडी फिल्म थी, और इसमें कैटरीना कैफ एंड अक्षय कुमार का तो बड़ा सिली सा रोल होता है. ऑफ़ कोर्स इट्स अ वेरी कॉमेडी रोल, थोड़े डिफरेंट सा उनका स्टाइल, एंड अच्छी फिल्म थी, स्टोरी अच्छी थी, और कैटरीना कैफ भी उस टाइम पर एक उभरता सितारा थी, एंड उनका नाम ऐसी फिल्मों के थ्रू काफ़ी बना इंडस्ट्री में. एंड नाउ शी इज़ टेकन अ बैक सीट, शी इज़ अ मदर, वाइफ टू विक्की कौशल, और अपना जो है ये पर्सनल मैरिड लाइफ अपना एज अ मदर ऑल्सो इन्जॉय कर रही हैं. दिस फिल्म ये इसमें जो है अक्षय कुमार के साथ वो ऑलरेडी नमस्ते लंदन एंड वेलकम में काम कर चुकी थी. दिस वॉज अनदर कोलेबोरेशन वेयर शी केम इन टू वर्क विद अक्षय कुमार फॉर दिस फिल्म कॉल्ड सिंग इज किंग. अभी लास्ट मिनट पे हमारे कुछ कॉलर्स कॉल करते हैं, एंड आप को पता है मैं 7 to 10 आती हूँ यहाँ पर, तो आप मुझे बाय 9:15 तक मुझे बता दीजिए कि कौन सा सॉन्ग सुनना है. दैट वे आई डोंट हैव टू टर्न यू अवे, बिकॉज टाइम जो है कम होता है, देन मुझे डिक्लाइन करना पड़ता है कि मैं आपकी चॉइस का सॉन्ग नहीं प्ले करूँगी बिकॉज ऑफ द टाइम शॉर्टेज एज वी आर मूविंग क्लोज टू 10 o'clock. विशाल शेखर की बात हो रही है, जुलाई 12th को आ रहे हैं वो कर्टिस कलवल सेंटर. कैश पटेल प्रोडक्शंस .com इज द प्लेस वेयर यू कैन बाय योर टिकट्स एट अ डिस्काउंटेड रेट ऑफ एटलीस्ट 30%. आप फनीजिया कोड डाल दीजिए. विशाल शेखर ने बहुत अच्छी फिल्मों बहुत अच्छा म्यूजिक जो है कंपोज किया है. द लिस्ट इज काउंटलेस, सच अ लॉन्ग लिस्ट. उनका जो काम, उनका जो नाम बना है अपने काम से, अमेजिंग, आउटस्टैंडिंग. दे आर अ वर्सेटाइल talented duo, and they are coming to be performing live for you in Dallas at the Curtis Culver Center. ये वाला जो song होगा वो आज के show का आखिरी song होगा. This is from the film called Chennai Express जो आई थी 2013 में, and विशाल शेखर ने ही इसमें बहुत अच्छा music दिया था. एंड फिल्म भी अच्छी थी, टेक्सास टू द डाउन सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया. और ये वाला सॉन्ग जिसमें इतने अच्छे अच्छे ब्यूटिफुल टी गार्डन्स हैं जिसमें ये गाना गा रहे हैं दोनों, शाहरुख खान एंड दीपिका. तो चलिए आप ये इन्जॉय कीजिए. कश्मीर मैं तू कन्याकुमारी चेन्नई एक्सप्रेस का सॉन्ग है, विशाल शेखर की कॉम्पोजिशन. एंड विद दिस आई टेक लीव फॉर टुडे. दिस इज आरजे एकरूप. आई विल सी यू नेक्स्ट संडे. ध्यान रखिए अपना, इन्जॉय योर डे, एंड हैव अ वंडरफुल वीक ahead. Bye-bye.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
3: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
4: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
5: Pan Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
4: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
6: Aaja meri gaadi mein baith ja.
7: Baith jaau? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
8: Wo thoda overheating tha.
7: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
9: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
10: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
6: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
11: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
13: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाय सुपरहिट
15: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
16: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
15: नहीं
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है
15: नहीं
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
15: वो भी नहीं
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी
18: AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
19: सुनो कल बहुत काम है पहले ग्रोसरी फिर पूजा का सामान गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे
20: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
19: कहाँ फूडिस्तान इन ऑबरी फ्रेश ग्रोसरी हलाल मीट पूजा एसेंशियल्स लाइव पानी पूरी फ्रेश गन्ने का जूस बेकरी आइटम्स प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी एंड इनसाइड फूडिस्तान एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली
20: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
21: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
22: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
23: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
24: Dallas ki dhadkan, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फनेशिया रेडियो 104.9 FM पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, जस्ट चिल में हम करते हैं एज द नेम सजेस्ट, जस्ट चिल। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक। अ बिग शाउट आउट टू एक रूप फॉर अ वंडरफुल शो दैट शी ब्रॉट टू अस टुडे मॉर्निंग। कमिंग बैक टू जस्ट चिल, सो एज आई सेड वील बी लिस्टिंग टू सम फन नंबर्स। सुनेंगे कुछ आपकी और कुछ मेरी पसंद के गाने। स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555।

वेल दैट वॉज मायरी. एंड याद तो बच्चों की भी आती है, जब बच्चे मूव आउट कर जाते हैं, कॉलेज चले जाते हैं, जॉब करने लगते हैं, तो याद तो बहुत आती है. एंड डैलस में इस वक्त गुंजन एंड सुशांत विजिट कर रहे हैं अपने बच्चों को यहाँ पर. एंड उन्होंने एक गाना रिक्वेस्ट किया है फॉर देयर किड्स, आर्यन एंड अनन्या. दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट फॉर यू. आई डू होप यू आर लिसनिंग, डू इन्जॉय, हैव फन.

वेल दैट वॉज रांझा टेकन फ्रॉम शेर शाह. एंड अब जब रांझा की बात हो रही है तो मैंने सोचा कि थोड़ी ज्वेलरी की बात भी हो ही जाए. पी एम जे ज्वेल्स इज नाउ इन फ्रिस्को, यू नो, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप. यू नो, यू कैन गो देयर एंड एक्सप्लोर सम स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शंस फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइलस्टोन्स. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara, PMJ is a name trusted by generations. Aap visit kare PMJ Jewels in Frisco. It's on Main Street and you can discover jewelry that tells your story.

वेल दैट वॉज जुगनी जी, एंड मैंने सोचा कि एकदम हंसी खुशी एक्साइटमेंट का माहौल है तो आपको एक और गाना सुनवाती हूँ. लेकिन उसके पहले उस गाने का ना मतलब बताती हूँ, क्योंकि कई बार होता है कि आप गाना सुन लेते हैं और आपको समझ नहीं आता कि ये था क्या. सो द गाना दैट आई एम गोना प्ले इज हुल्ले हुलारे, एंड दोज हु वुडंट नो इट एक्चुअली ट्रांसलेट्स टू समथिंग लाइक लेट्स सेलिब्रेट, यू नो, व्हाट अ जॉयस सेलिब्रेशन, चीयर्स. सो जब कोई कहे ना कि आज ता हुल्ले हुलारे होंगे, दैट मीन्स टुडे इज गोइंग टू बी अ फुल ऑफ सेलिब्रेशन एंड फन डे. सो हुल्ले हुलारे इट इज.

बिल्कुल हुल्ले हुलारे ही होने वाले हैं क्योंकि विशाल शेखर आ रहे हैं डैलस, जी हाँ, अपना सुपरहिट टूर लेकर. एंड दैट्स गोइंग टू बी नेक्स्ट संडे जुलाई 12th एट द कर्टिस कर्बल सेंटर इन गार्लैंड. टिकट्स आर ऑन सेल नाउ एट cashpatelproductions.com. दैट्स कैश विद अ के. सो रिमेंबर, इट्स गोइंग टू बी ऑन द 12th ऑफ जुलाई, दैट्स नेक्स्ट संडे, एट कर्टिस कर्बल सेंटर इन गार्लैंड. विशाल एंड शेखर लाइव फॉर यू. सो डेफिनेटली गो अहेड एंड बाय दोज टिकट्स.

0: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
1: हाँ देख लेंगे।
0: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाए?
1: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
2: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels, वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
3: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
4: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
5: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
7: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
8: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at

taken from the movie Rais, that was Udi Udi Jai. And अगर आपकी नींद उड़ी जा रही है और समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएं डॉक्टर को, किस डॉक्टर को दिखाएं, यू नो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है, तो मैं आपके लिए एक सोल्यूशन लेकर आ रही हूँ. जी हाँ, फॉर 13 years टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज़ प्राउडली केयर्ड फॉर आर कम्युनिटी, राइट? सो नाउ दे आर ग्रोइंग विद अ ब्रांड न्यू नेम एंड अ सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन, इंट्रोड्यूसिंग लियोनॉक्सी मेडिकल. सबसे अच्छी बात लियोनॉक्सी मेडिकल की ये है दैट नो अपॉइंटमेंट नीडेड, यू कैन वॉक इन एनी टाइम. दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. सो यू नो, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, लियोनॉक्सी मेडिकल ब्रिंग्स प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्स रेज, सिटी स्कैंस, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स एंड हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज, ऑल अंडर वन रूफ. तो नाम रखें याद, दैट्स लियोनॉक्सी मेडिकल. दे आर ओपन 7 days अ वीक फ्रॉम 8 AM टू 8 PM एंड यू कैन वॉक इन एनी टाइम, नो अपॉइंटमेंट्स नीडेड व्हाट्सोएवर.

That was झूमे जो पठान, पठान का टाइटल ट्रैक, एंड इट सीम्स लाइक जिस तरह से रिक्वेस्ट आ रही हैं कि ये सेगमेंट शायद हम शाहरुख खान को ही डेडिकेट करेंगे, बिकॉज बैक टू बैक आई एम गेटिंग रिक्वेस्ट विच आर ऑल शाहरुख खान सॉन्ग्स. सो बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट वन, यू नो आई वॉज ट्राइंग टू जस्ट सर्च अप समथिंग अबाउट शाहरुख खान विच एटलीस्ट आई डेंट नो, एंड दैट वॉज दिस. इट वॉज कि इनकी, शाहरुख खान की जो पहली सैलरी थी वॉज जस्ट ₹50. You know, Shahrukh Khan earned his first paycheck as an usher at a Pankaj Udas concert in Delhi. And उन्होंने उस ₹50 को पता है कैसे यूज किया? He later used that money to take a train to Agra to visit the Taj Mahal.

Well, that was taken from the movie फिर भी दिल है हिंदुस्तानी बन के तेरा जोगी। Well, आज हम इस सेगमेंट में बात कर रहे हैं शाहरुख खान की, तो आपको एक और मज़ेदार बात बताती हूँ। आपको पता है कि द किंग ऑफ बॉलीवुड वंस स्ट्रगल्ड विद हिंदी और उनकी माँ ने उन्हें प्रॉमिस किया दैट शी विल टेक हिम टू द मूवीज इफ़ ही स्कोर्ड वेल इन हिंदी, एंड सो ही वर्कड रियली हार्ड एंड इम्प्रूव। तो मतलब बचपन से ही बॉलीवुड से प्यार है। शाहरुख खान यू नो रिसीव द प्रेस्टिजियस स्वॉर्ड ऑफ ऑनर एट सेंट कोलंबस स्कूल इन दिल्ली फॉर एक्सेलिंग इन एकेडमिक्स स्पोर्ट्स एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़। सो बिल्कुल ऑलराउंडर एंड ऑलवेज ऑलवेज द बेस्ट।

जैसे शाहरुख खान कह रहे हैं ना कि पहले तो नहीं सोचा था, तो भैया होता ऐसा ही है कि कभी कभी आप नहीं सोचते नहीं चाहते फिर भी इन्वॉल्व हो जाते हैं कोई ट्रक या कार एक्सीडेंट में, या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट में। तो आपको अटर्नी ओमार ख्वाजा को रखना है याद, एज ही विल फाइट योर केस, गेट यू द कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व, ही विल डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज एंड टेक अवे ऑल द स्ट्रेस फ्रॉम यू, एंड यू डू नॉट पे अंटिल यू विन। जब तक आप अपना केस जीत नहीं जाते, यू डू नॉट पे अटर्नी ओमार ख्वाजा एनीथिंग। सो फॉर अ फ्री कंसल्टेशन आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 4693005046, और यू कैन विजिट अटर्नी ओमार .com, दैट्स अटर्नी ओमार .com।

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
5: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
6: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
7: कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स.
6: Construction ho ya renovation, business kharidna ho ya refinance karana ho, for all your business financial needs at the best interest rate and lowest down payment, call the SBA loan experts at 817-786-3338. That's 817-786-3338.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
13: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We are growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
14: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
15: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
16: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
17: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia, 104.9 FM.

You're tuned in to 104.9 FM, Fun Asia Radio, bringing the community together. मैं हूँ मधुलिका, लेकर आई हूँ Just Chill, जहाँ करते हैं हम, as the name suggests, Just Chill. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. अच्छा, एक गिव अवे आने वाला है, तो प्लीज डू कीप ट्यूनिंग इन. आई मीन, कहीं जाइएगा नहीं, सुनते रहिए, क्योंकि इस गाने के बाद आएगा आपके लिए एक सवाल. एंड यस, स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 972-235-5555. पिछला सेगमेंट अनजाने में ही शाहरुख खान को डेडिकेट हो गया, तो बीच में जब ब्रेक आई तो बहुत सी कॉल्स आई कि भाई आमिर खान क्यों पीछे रह जाएं. तो लुक्स लाइक दिस सेगमेंट विल बी डेडिकेटेड टू आमिर खान. एंड यस, द फर्स्ट सॉन्ग थोड़ा सा स्लो है, बट बहुत ही प्यारा सा गाना है ये. एंड दैट्स द टाइटल सॉन्ग, दिल है कि मानता नहीं. हियर इट इज़, एंजॉय.

जी हाँ, दिल बिल्कुल नहीं मानता है और कहता है कि भाई जल्दी से गिव अवे सवाल पूछ लिया जाए। तो गिव अवे आ रहा है फ्लेवर लाउंज की तरफ से। जी हाँ, हेयर इज योर चांस टू विन अ दाल मखनी या ढाबा स्टाइल चिकन करी एट द फ्लेवर लाउंज रेस्टोरेंट लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को। एंड दिस गिव अवे इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली, राइट? सो प्लीज लिसनर्स, ये जरूर ध्यान रखिएगा दैट मेक श्योर दैट यू हैव नॉट वन दिस गिव अवे ऑन एनी अदर शो एट फनेशिया इन द लास्ट 1 month। यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ इन फनेशिया, एंड इट्स द रीजन इज कि हम चाहते हैं कि और भी लिसनर्स को मौका मिले। सो सवाल ये है कि क्योंकि हम अभी आमिर खान की बात कर रहे हैं, राइट? सो द क्वेश्चन फॉर यू इज दैट टेल मी टू सॉन्ग्स संग बाय आमिर खान। कोई भी ऐसे दो गाने जो आमिर खान ने खुद गाए हैं वो बताइए कौन से हैं। स्टूडियो का नंबर 9722355555। एंड द क्वेश्चन वंस अगेन इज कि आप मुझे बताइए कि आमिर खान ने कौन से दो गाने खुद अपनी आवाज़ में गाए हैं।

वेल, अगर आप भी नए ख्वाब बुन रहे हैं अपने उस प्यारे से घर के, तो भाई योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक विद ड्रीम होम मोर्गेज. जी हाँ, 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज हैज हेल्प्ड फैमिलीज अक्रॉस द कंट्री टर्न होम ओनरशिप इनटू रियलिटी विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस एंड अ स्मूथ स्ट्रेस फ्री प्रोसेस. दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स एंड देयर एक्सपीरियंस टीम इज कमिटेड टू फाइंडिंग द राइट लोन ऑप्शन टेलर्ड टू योर नीड्स. मतलब जिस तरह की भी आपकी नीड होगी उस हिसाब से वो आपका जो पूरी कोशिश करेंगे कि हेल्प हो जाए. सो वेदर यू आर बाइंग योर फर्स्ट होम या फिर आप अपग्रेड कर रहे हैं या रीफाइनेंस चाहते हैं अपने घर का, देन स्टार्ट योर होम ओनरशिप जर्नी विद कॉन्फिडेंस टूडे एंड डू कॉल देम. ड्रीम होम मोर्गेज का नंबर है 9722455626 और यू कैन विजिट dreamhomemortgage.com फॉर मोर डिटेल्स. दैट्स dreamhomemortgage.com.

0: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
1: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
2: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
1: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
6: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
7: मैं हीरो।
8: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.
9: Beta, 95% aaye?
10: Haan, mummy.
9: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
11: मेरा?
9: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
11: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
12: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music

दैट्स लिफ्ट करा दे. अच्छा होता है ना, अक्सर ही होता है कि गानों में अगर आप लिटरल ट्रांसलेशन करें तो आपको समझ ही नहीं आएगा कि भैया कवि कहना क्या चाहता है. वो याद है ना कि जब हम छोटे थे और हिंदी के टेस्ट में जब आता था ना कि उपयुक्त पंक्तियों में कवि क्या कहना चाहता है, तो उसी तरह से होता है कि आप कभी कोई गाना सुनते हैं एंड यू फील कि मतलब क्या कवि क्या कहना चाहता है. अब जैसे ये अगला गाना विच इज़ पिया बसंती रे. अब पिया जो है वो बसंती नहीं है, लेकिन उस बेसिकली फ्रेज का मतलब है. जनरली क्या होता है कि स्प्रिंग इन इंडियन पोएट्री सिम्बलाइजेज न्यू बिगनिंग और लव और ब्यूटी और यू नो सम होप. सो वेन समवन सेज पिया बसंती, दे आर एक्चुअली कंपेयरिंग देयर बिलव्ड टू स्प्रिंग इट सेल्फ, समवन हुज प्रेजेंस फिल्स लाइफ विद कलर वॉर्म्थ हैप्पीनेस एंड रोमांस. दैट्स पिया बसंती फॉर यू.

दैट वॉज पिया बसंती, है ना, कवि की अलग ही उपयुक्त पंक्तियों में व्याख्या. सो वेल, ऐसा ही एक और गाना है एंड दैट इज सावन में लग गई आग. अब जनरली जो यू नो फॉरेस्ट में आग लगती है वो गर्मी की वजह से लगती है, जब बारिश हो रही है, जब सावन है तो आग कहाँ से लग जाएगी. बट बेसिकली अगर आप उस उन उपयुक्त पंक्तियों की व्याख्या करें तो कवि ये कहना चाह रहा है दैट इवन दो एवरीथिंग अराउंड हिम इज कूल एंड रेनी, हिज हार्ट इज स्टिल बर्निंग विद लव. बेसिकली इवन द रेनी सीजन कैन नॉट कूल द फायर इनसाइड हिज हार्ट, एंड दैट्स सावन में लग गई आग.

वेल, अगर इस गाने की अगर मैं बात करूं तो यू नो सोशल मीडिया के ज़माने से बहुत पहले बॉलीवुड ने यू नो लव एट फर्स्ट साइट को जो इतना खूबसूरत गाने में पिरो दिया है कि आज भी चाहे ओरिजिनल सुनो या रीमेक, सामने ये कौन आया सुनते ही चेहरे पर एक मुस्कान आ ही जाती है। नहीं,

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।
5: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग
6: हैं। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
7: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
8: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
7: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
9: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Ajji, sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
15: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभालेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: The Texas Super Kings are here, and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
1: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
0: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
2: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
4: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadoo? Dhua dhua. Kyun sab uljhe hain parivarik samasyaon mein? Kabhi padhai to kabhi naukri ki chinta. Zindagi ke raaste dhundle ho gaye hoon. तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव।
6: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: Astrology readings for guidance only and results may vary.
8: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
9: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
10: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
11: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम चिकन तंदूरी मलाई चिकन टिक्का पनीर टिक्का मोमो या सोया चाप अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स नॉट जस्ट दैट फ्रॉम जुलाई 3rd to 5th तंदूरी

रंग बिनी राधा ने लई बैठी बादा अब मुरलियों बंद कर मादा कि जैसे

104.9 FM फनीश रेडियो पे सुन रहे हैं आप मुझे यानी कि नीलम को, और एक बार फिर से आप सब की खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार, आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, संडे का इस सेगमेंट 2 बजे तक प्रस्तुत करती हूँ मैं आप सभी के लिए फिल्मी दुनिया की चकाचौंध से दूर, एक और दुनिया जहाँ पर होते हैं गैर फिल्मी गाने, और वहाँ पर हम बहुत सारे कुछ अलग अलग आवाज़ें सुनते हैं, नई आवाज़ें सुनते हैं, वेब सीरीज़ की बातें करते हैं, पाकिस्तानी ड्रामास की, कुछ आज़ाद परिंदों की यानी कि इंडिपेंडेंट सिंगर्स की भी बातें होती है यहाँ पर, जो किसी भी फिल्म के अलावा भी जिन्हें गाने गाए बस वो गाने से हमारे दिल पर राज करने लगे, ऐसी सारी बातें, कलाकारों की बातें, गानों की बातें, साज और आवाज़ की बातें आपकी खिदमत में टिल 2 PM। लेकिन अमूमन हमारी जो शुरुआत होती है कार्यक्रम की वो करते हैं हम एक फिल्मी गाने के साथ। अब ये जो फिल्मी गाना आपको सुनवाने जा रही हूँ, आई डोंट थिंक दिस फिल्म हैज़ रिलीज्ड येट, नहीं रिलीज हुई राइट। सलमान खान की ये फिल्म है मातृभूमि से लिया गया ये गीत, और जब मैंने गीत ये पहली बार सुना मुझे बहुत अच्छा लगा, तो चलिए आप सभी के लिए भी प्रस्तुत करती हूँ गीत। मातृभूमि है फिल्म का नाम, जिसमें उनके साथ यानी कि सलमान जी के साथ है चित्रांगदा सिंह, डिफरेंट पेयरिंग है ना। अब तक चित्रांगदा सिंह ने बहुत सारी फिल्म्स ऐसी की है विच आर नॉट वेरी टिपिकल कमर्शियल फिल्म्स, कुछ डिफरेंट किया है, तो वेल विल सी कि इसमें डिफरेंट क्या है ये बात। खैर, एक फिल्म है जो आप देखेंगे कुछ ही महीनों में, वीक्स में, आई डोंट नो व्हेन इट इज़ गेटिंग रिलीज, लेकिन ये गीत बहुत अच्छा लगा मुझे जो आपको सुनवाने लगी हूँ मैं यहाँ पे ऑन 104.9 FM।

प्यासा 1957 की एक ऐसी फिल्म थी गुरुदत्त साहब की, जिसमें उनके साथ माला सिन्हा थी। इस फिल्म के सारे गाने एस डी बर्मन साहब ने कंपोज किए थे। एंड जो ये गाना ओरिजिनली अभी जो आपने आवाज़ सुनी उनकी भी कहानी बताती हूँ, ठहरिए ज़रा। पहले ओरिजिनल गाने की कुछ कहानी बता दो, आपको याद ही होगा। इस गाने को हेमंत कुमार साहब ने गाया था। नाउ इस फिल्म में बहुत सारे रफ़ी साहब के गाने थे, लेकिन ये गीत जो था हेमंत कुमार साहब की आवाज़ में इसलिए लिया गया था क्योंकि जो आवाज़ थी इस गीत से बहुत जचती थी। साहिर रुद्यानवी साहब के बोल थे और प्यासा के सारे गाने हार्ट टचिंग फिल्म, हार्ट टचिंग सॉन्ग्स। अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म ने ज़्यादा बिजनेस नहीं किया था, 50s की ये फिल्म है। लेकिन कुछ फिल्म ऐसी होती है जो ज़्यादा बिजनेस नहीं कर पाती, लेकिन उनका नाम दर्ज हो जाता है इतिहास में। प्यासा फिल्म में भी कुछ ऐसी ही बात हुई थी। खैर, अब आपको लगेगा कि इतनी सारी कहानी क्यों भैया हमें बता दी, इसलिए क्योंकि ये जो गीत आपने सुना सौरेंद्र और सौम्यजीत की जी की आवाज़ में था। वर्ल्ड म्यूज़िक डे में अक्सर हर साल जब वो कॉन्सर्ट करते हैं, दे डू गिव ट्रिब्यूट टू द लेजेंडरी क्लासिक सिंगर्स, कंपोजर्स, उनके गाने, फिल्म मेकर्स को वगैरह वगैरह। तो ये भी गीत उन्हीं को ट्रिब्यूट कर लेने के लिए था, गुरुदत्त साहब की फिल्म प्यासा को। और मेरी कोशिश होती है कि हालांकि हाँ ऑफकोर्स हम रेट्रो गाने नहीं आपके लिए प्रस्तुत करते, लेकिन जहाँ जहाँ ऐसे बॉलीवुड कॉन्सर्ट्स, आई वुडंट से बॉलीवुड कॉन्सर्ट टू दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे, इट्स नॉट रियली अ टिपिकल बॉलीवुड कॉन्सर्ट जिसमें भर कर संगीत होता है, भर भर के जितना हो सके भर कर संगीत होता है, धुरंधर को बुलाया जाते हैं। एंड आई ट्राई, जब भी मुझे मौका मिलता है वहीं से आपको कुछ ऐसे गाने आपके लिए प्रस्तुत करूँ, कुछ लाइव कॉन्सर्ट से कुछ ऐसी लाइव बातें। और बस आपकी कॉल्स के साथ रहता है ये साथ, म्यूजिकल साथ, टिल 2 PM एवरी सैटरडे, संडे एक्चुअली, सैटरडे 3 बजे तक। आज साथ होगा 2 बजे तक।

फहीम अब्दुल्ला और उनके साथ दुला शाह की आवाज़ में ये गीत आपने सुना, गैर फिल्मी गाना। जी बिल्कुल, क्योंकि कोशिश होती है इस कार्यक्रम के दौरान, इस सेगमेंट के दौरान आपके लिए कुछ गज़ल, कुछ गैर फिल्मी गाने, कुछ पॉप रॉक फ्यूजन के गाने, कुछ सूफी गाने और कुछ सीरीज़ और ड्रामास के भी गाने लाती हूँ मैं नीलम एवरी संडे। अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र किया मैं, है ना, जो आपने सोचा था वो कभी होता नहीं, अगर हो गया तो बस अल्लाह भगवान की खिदमत आशीर्वाद मान लीजिए, करम मान लीजिए। रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम है, पहले हर चीज़ थी अपनी मगर अब लगता है अपने ही घर में किसी दूसरे घर के हम है, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम है। ये जब बोल हो, लफ्ज़ हो और साथ में अगर जगजीत सिंह साहब की आवाज़ हो तो क्या बात है।

रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हमें। निदा फाजली साहब की बहुत ही खूबसूरत ये बात आपने सुनी जगजीत सिंह जी की आवाज में 104.9 FM। एजी फिनटेक्स का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com। आपके बिजनेस को आपके इंडिविजुअल टैक्सिंग को भी बिल्कुल मदद कर सकते हैं। फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US, ट्रस्टेड एफिशिएंट एंड कैन गेट रेडी फॉर द फ्यूचर। जी हाँ, एक बार फिर से एजी फिनटेक्स का नंबर आप नोट कर लीजिएगा, दैट इज 4699429888 और यू कैन विजिट agfintechs.com। डॉक्टर्स की अपॉइंटमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल बात है ना। जब भी आपको जाना होता है हम सोचते हैं कि यार आज नहीं कल मिलेगी, कल नहीं परसों मिलेगी, लेकिन अरे ये क्या मेरी मीटिंग है, मीटिंग तो स्किप नहीं कर सकती वगैरह वगैरह। बहुत लंबी सी हमारी प्रॉब्लम हो जाती है जब डॉक्टर्स के पास जाना हो। लेकिन वॉट इफ़ यू गेट द सेम डे अपॉइंटमेंट, ये हो सकता है आपके लिए पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में, क्योंकि उनके बहुत सारे लोकेशंस हैं। दैट इज़ द बिगेस्ट एडवांटेज कि आपके घर के नज़दीक भी एक लोकेशन हो सकता है। तो आज ही आप ज़रूर कॉल कीजिएगा पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, जिनका नंबर है 214-666-6259। वंस अगेन दैट इज 214-666-6259।

0: एंड बिल्कुल पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर डॉट कॉम है, उसके अलावा पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम, दैट इज़ अ वेबसाइट, पैशन हेल्थ फिजिशियंस डॉट कॉम, तो बिल्कुल आप जा सकते हैं वहाँ पे. एज आई सेड, दे हैव मेनी लोकेशंस इंक्लूडिंग फ्लावर माउंट, लुइसविल, आई नो दे हैव वन इन फ्लावर माउंट, वन इन लुइसविल, ऑल्सो अलॉन्ग विद दैट ओबरी में भी उनके लोकेशन है. तो आज ही कॉल कीजिएगा 214-666-6259, दैट इज पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. और भी कुछ गाने बाकी हैं भाई, पिक्चर बाकी है जी, बिल्कुल आपके फ़ोन कॉल्स भी बाकी है, तो अब भाई हमारे गाने भी बाकी है, तो गाने सुनते रहिए, आपके कॉल्स भी आते आने दीजिए. एंड कुछ गाने, अब वेब सीरीज़ की बातें होगी, कुछ पाकिस्तानी ड्रामास के आपको गाने सुनवाऊंगी, कुछ इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की भी बातें होगी, कुछ आपकी पसंद होगी, कुछ हमारी पसंद होगी, और बस यही म्यूजिकल मुलाकात हमारी होती है एवरी संडे. टिल
1: कहाँ गया, कहाँ रखा था, सुनो ना मेरा वो वाला सेट कहाँ है.
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
2: अरे सारे तो सेम है.
1: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला.
2: ओ हाँ, ये तो अलग है.
3: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
4: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
5: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
6: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे,
7: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
3: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
6: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
3: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
3: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न, समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
9: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान. myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस. और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory, NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
10: Everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights B.
3: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
11: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे.
12: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
11: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा.
12: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो.
11: सच में? सब संभालेंगे?
12: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर. वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह. सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली.
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. Vanessa Events, your celebration partner.

एंड वेलकम बैक, दिस इज़ के सी एम पी 4.9 FM फनीशा रेडियो पे, मैं हूँ नीलम आपके साथ. वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू एंड अ वेरी वार्म वेलकम, प्यार भरा स्वागत आप सभी का. एंड थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग मी पार्ट ऑफ योर वीकेंड, सैटरडेज एंड संडेज आपकी और हमारी म्यूजिकल मुलाकातें. तारा कमर्शियल एनर्जी को बिल्कुल याद करना चाहेंगे क्योंकि एक नहीं लेकिन बहुत सारे सालों से, जी हाँ, सिंस 2002 आपकी सेवा में है और हमारी कम्युनिटी की सेवा में है विद कॉम्पिटिटिव रेट्स, रिलायबल सर्विस एंड कस्टमाइज एनर्जी प्लान्स. वंस अगेन, दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी सिंस 2002. नंबर इज 8444282328. वंस अगेन, दैट इज 8444282808. और यू कैन विजिट taraenergy.com. विशाल शेखर के आप बहुत बड़े फैन होंगे. जी बिल्कुल, दोनों अच्छा गाते भी है लेकिन उससे ज्यादा अच्छे कंपोजर्स भी है जो होंगे यहाँ पर लाइव. एंड व्हेन इट दिस इज हैपनिंग नेक्स्ट संडे 12th of July, कर्टिस कलविल सेंटर में आप बिल्कुल जा सकते हैं. टिकट्स के लिए यू कैन लॉग ऑन टू kashpatelproductions.com, दैट इज kashpatelproductions.com. वंस अगेन, इट इज July 12th एट द कर्टिस कलविल सेंटर. बॉलीवुड के कुछ सुपर हिट्स गाने हो गए विशाल शेखर जी के साथ. एंड आई रिमेम्बर, आई थिंक फ्यू ईयर्स अगो, आई डोंट नो एग्जैक्टली विच ईयर वॉज दैट, वॉज इट 2015, 2014 or 2016, इधर ऑफ दैट. एंड आई वॉज वन ऑफ, लाइक यू नो, इट वॉज वन ऑफ दैट कॉन्सर्ट जहाँ पे विशाल थे, आई डोंट रिमेम्बर दैट, बट शेखर थे और उनके साथ एक और फीमेल सिंगर थी. एंड दे डिड अ वंडरफुल जॉब. उनके गाने भी गाए थे, कुछ और भी सिंगर्स के गाने गाए थे, कुछ और म्यूजिक कंपोजर्स के भी गाने गाए थे. इट वाज अ वंडरफुल कॉन्सर्ट. तो एक बार फिर से वही जोड़ी आ रही है, विशाल एंड शेखर ऑन संडे July 12th. और मैं हूं नीलम आपके साथ. कुछ गैर फिल्मी गाने, गैर फिल्मी बातें, कुछ बहुत ही अच्छे कलाकारों की आवाजों में हम सुनते हैं यहाँ पे एवरी संडे.

शनी अरशद जी की आवाज़ सुनी आपने एंड पाकिस्तानी ड्रामा सारा अप्पी से आपने सुनना चाहा था। हमारे लिसनर्स, बहुत सारे लिसनर्स अच्छे अच्छे हमें ड्रामास के नाम देते हैं और उनके गाने भी बिल्कुल सजेस्ट करते हैं, सो थैंक यू सो मच। दिलजीत दोसांझ के आप बहुत बड़े फ़ैन हो गए हैं ना, एज अ सिंगर, एज एन एक्टर एज वेल। तो उन्होंने एज अ प्रोड्यूसर एक फिल्म बनाई थी 3 साल पहले, जिसका नाम था पंजाब 95। नाउ 3 साल तक ये जो फिल्म थी सेंसर बोर्ड में फंस रही थी। CBFC ने उसमें बहुत सारे कट्स लगाने का निर्देश दिया था एंड दे वर ट्राइंग टू डू ऑल दैट। फिर भी विवाद हो रहे थे, फिल्म अटक गई थी, फिल्म को कोई डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं चाहता था। फाइनली दिलजीत जी ने उसे चुपके से OTT पर रिलीज़ कर दिया है और उसका जो टाइटल है दैट इज़ सतलज। जी हाँ, सतलज नाम है एंड OTT फिल्म की है ये रिलीज़। इट इज़ नॉट अ थिएट्रिकल रिलीज़, सिर्फ और सिर्फ OTT पर है ये फिल्म, जिसमें कोई भी कट नहीं लगाया। नाउ यू नो द बेनिफिट कह दीजिए या नॉट सो मच बिग ऑफ बेनिफिट, लेकिन जो नेटफ्लिक्स एंड OTT अलग अलग प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे हमारे अपेरेंटली इंडियन सेंसर बोर्ड के जो नियम है वो लागू नहीं होते। सो अगर आपकी इंडियन सेंसर बोर्ड ने किसी फिल्म को अटका दिया है फॉर वॉट एवर रीज़न, पॉलिटिकल है या ये है वो है, डिस्ट्रीब्यूटर्स और प्रोड्यूसर्स एंड डायरेक्टर्स कैन स्मार्टली पुट द सेम फिल्म ऑन OTT और कोई रोकेगा नहीं। सो आई डोंट नो, यू नो इट्स इट कुड बी अ बिग कॉन्ट्रोवर्सी, राइट? पूरा एक हम सेगमेंट कर सकते हैं इसमें कि कितनी वाजिब बात है ये कि अगर आपकी फिल्म सेंसर पास नहीं कर रही है एंड नेटफ्लिक्स इज सेइंग ओके दैट इज़ फाइन यू कैन रिलीज इट हियर, इज़ इट रियली गोइंग टू बी बेनिफिशियल फॉर आवर सोसाइटी? क्योंकि ऐसी बहुत सारी सीरीज़ भी है फॉर एग्जाम्पल जिसमें कोई सेंसर नहीं है एंड इट इज़ स्टिल यू नो बहुत ही प्यार से लोग देखते हैं इसे इंडिया में, ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो खैर, एज आई सेड, इट्स कुड बी अ बिग आर्ग्यूमेंट, कॉन्ट्रोवर्सी भी हो सकती है जिसमें बहुत सारी डिबेट फॉर एंड टू हो सकती है। लेकिन खैर, अब अगर आप देखना चाहे इस सीरीज को, नॉट अ सीरीज, इट्स अ फिल्म, सिर्फ OTT फिल्म है ये, जिसका नाम है सतलज एंड इट इज़ प्रोड्यूस्ड बाय दिलजीत दोसांझ।

आजकल के डिजिटल युग में टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है, एंड इंक्लूडिंग मी, आई एम श्योर आप भी करते होंगे कि शॉपिंग से लेके, बैंकिंग से लेके, जो भी कुछ काम है, वी डू इट ऑनलाइन. कौन जाए भला, कौन, लाइक राइट, शॉपिंग करने के लिए कौन जाए बैंक में? आई डोंट थिंक एनी बडी इज़ गोइंग टू बैंक एनी मोर. आई एम जस्ट नॉट जनरलाइजिंग द स्टेटमेंट, लेकिन फिर भी ज़्यादातर काम हमारे जो भी हो वो हम ऑनलाइन ही कर देते हैं. लेकिन इसी के साथ बहुत सारी हैकिंग भी होती है, ऑनलाइन फ्रॉड होते हैं, डिजिटल अरेस्ट, साइबर बुलिंग एंड वॉट नॉट, राइट. साइबर क्राइम इज़ अ वेरी बिग बिग थिंग नाउ डेज, स्पेशली इन इंडिया, जहाँ पे साइबर क्राइम ब्रांच एक अलग ब्रांच बनी गई है. तो बस अब हमारे राजकुमार जो हिरानी है, राजकुमार हिरानी, अ वेरी वेरी ग्रेट प्रोड्यूसर, और उन्होंने सोचा कि सारे अच्छे अच्छे प्रोड्यूसर डायरेक्टर वेब सीरीज बना रहे हैं दुनिया में, वेब सीरीज की दुनिया में कदम रख रहे हैं, तो भाई हम क्यों ना रखें. और इस कदम के लिए उन्होंने सोचा है ये टॉपिक जिसका नाम है साइबर क्राइम, जी हाँ, साइबर अपराध जिसे हम कहते हैं. तो उनकी वेब सीरीज का नाम होगा प्रीतम एंड पेड्रो. ये है, जी हाँ, दैट इज़ द नेम ऑफ द सीरीज. एंड राजू हिरानी उसमें बतौर निर्माता भी है, और उनके बेटे, OTT पर वो पहली बार, उनकी ऑफकोर्स ये कदम होगा, उनके उनके बेटे जो है वीर हिरानी, वो दुनिया में, एक्टिंग की दुनिया में कदम रखने वाले. तो पापा ने उनके लिए वेब सीरीज बना दी, मूवी बनाए ना बनाए, लेकिन वेब सीरीज बना दी पापा ने. और उनके बेटे का नाम है वीर हिरानी, जो इस सीरीज में नजर आएंगे, एंड दैट इज प्रीतम एंड पेड्रो. जाहिर है भाई, उम्मीदें ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा होगी इनफैक्ट, क्योंकि एक तो जो सब्जेक्ट है विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, साइबर क्राइम, और उस पर जब जहाँ जहाँ राजू हिरानी का नाम लग जाता है, चाहे वो फिल्म हो या पहली बार वो वेब सीरीज़ बना रहे हैं, ऑफकोर्स हमारी बहुत सारी एक्टिंग के लिए तो पता नहीं उनके बेटे की क्या होगी एक्टिंग, लेकिन एज अ प्रोड्यूसर ये फिल्म जब भी हम देखते हैं उनकी, तो उसकी सीरीज़ ऐसी कैसी होगी वो बिल्कुल देखनी बनती है. सो एक लाजवाब सा मस्ट वॉच सीरीज़ होगी ये, या फिर इट विल बी लाइक यू नो टिपिकल, जो भी हम अलग अलग सीरीज़ देखते हैं वैसे होगी, वो तो देखने की बात है. बट एज आई सेड, पहली बार राजकुमार हिरानी इन द वर्ल्ड ऑफ OTT प्लेटफॉर्म.

इंडी पॉप का कल्ट क्लासिक, जी हाँ, 2002 में रिलीज हुआ था एक एल्बम जिसका नाम था पहला पहला प्यार, एक्चुअली तेरा मेरा प्यार, नॉट पहला पहला प्यार, एंड इसी एल्बम का ये गीत है पहला पहला प्यार। सो तेरा मेरा प्यार एल्बम का नाम और ये गाने का नाम था पहला पहला प्यार। कुमार सानू जी की आवाज़ थी एंड यस 2002 में उन्होंने ये एल्बम रिलीज़ किया था, जो किसी फिल्म का हिस्सा नहीं था, जैसे इट्स अ गैर फिल्मी गाना, लेकिन फिर भी उस साल में सारे रेडियो टीवी चैनल पर वो चार्टबस्टर बन रहा था। और आज भी ये गाना बहुत ही पॉपुलर है कुमार सानू जी की आवाज़ में, और 104.9 FM पे सुनी आपने ये बहुत ही खूबसूरत बात। गैर फिल्मी गानों के इस सेगमेंट में बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ अदा आपका, क्योंकि आपके साथ के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। तो बिल्कुल ये साथ हमेशा बनाए रखना, बरकरार रखना, आपका जो प्यार है हमारे इस फनीशा रेडियो पे बरकरार रखना। होती है आपकी और हमारी म्यूजिकल मुलाकातें सैटरडेज, भूलिएगा मत, 12 से 3 के बीच में, जी हाँ, जहाँ 2 बजे तक आपके लिए फिल्मी गाने लाती हूँ, बॉलीवुड के थीम बेस्ड गाने। राइट आफ्टर 2 PM वी हैव अ कम्युनिटी राउंड अप। क्या होती है इसमें बातें? उसमें बातें होती है नॉन प्रॉफिट इवेंट्स की, एक्टिविटीज़ की, अपकमिंग जितने भी हमारे शहर में इवेंट्स है वो सारी जानकारी आपके लिए मैं लाती हूँ। उसी के साथ हमारे साथ जुड़ते हैं किसी भी धार्मिक या सामाजिक संस्था के प्रतिनिधि, कुछ इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल पेट्रियोटिक गाने होते हैं उसी कार्यक्रम के दौरान। और नॉट ओनली दैट, इफ यू ऑल्सो वॉन्ट टू प्रमोट योर इवेंट्स ऑन वन ऑफ दोज शोज, प्लीज रीच आउट टू मी, दैट इज neelam@funasia.net। जी हाँ, अगर आप किसी भी सामाजिक संस्था से जुड़े हुए हैं, आपके भी कुछ इवेंट्स है जो आप हम तक पहुँचाना चाहे, पूरी कम्युनिटी तक पहुँचाना चाहे, देन दैट इज़ योर फ्री प्लेटफॉर्म एवरी सैटरडे बिटवीन 2 and 3 PM। वंस अगेन, इट इज़ neelam@funasia.net। तो ये तो बात हो गई सैटरडे की 12 से 3, संडेज 12 से 2, जहाँ 12 से 1 के बीच में गुजराती कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, और 2 बजे तक आपने सुने यही कुछ गैर फिल्मी गाने। बस ऐसे ही आपका और हमारा साथ बना रहे, म्यूजिक के साथ, सुरों के साथ, संगीत के साथ, हर हफ्ते।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
3: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
4: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
5: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
4: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
6: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो।
7: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
9: इतना सब और प्राइस?
8: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
10: मैं हीरो।
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
12: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
13: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
14: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
15: Moon duty, Shahla.

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल, classic pours and the food crafted to suit every craving, every appetite.
4: मतलब great food, great drinks and great company, यानी कि मैं।
3: Page 3 Eatery, eat, sip, gossip, repeat.
6: ये तारा वो तारा हर तारा।
3: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
7: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
8: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
9: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
10: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
9: Kya matlab?
10: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
9: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
10: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
9: Ab to karna hi padega, madam.
11: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
13: एक ब्रेसलेट का सीरियल नंबर भेज रहा हूँ, ट्रैक इट राइट अवे।
14: All right, welcome back, Dallas. You are listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. Welcome back if you have been with us, or welcome in general if you are just now joining us. I'm your RJ Priya, and we have about 30 minutes left in our show, but we're going to make this the best 30 minutes of your Sunday, hopefully. So let's get our playlist started with this amazing song from the movie War 2. And just as a reminder, I am in studio, so be sure to call our studio number at 972-235-5555 for any and all song requests.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है. ये वाला बहुत हैवी है. और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
4: तो पहनती क्यों नहीं हो?
3: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप.
4: तो रोज वाला ले लो.
5: India's most loved everyday jewelry brand, Karat Lane, is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. Karat Lane now open next to Tanishq in Frisco.
6: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
7: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
6: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
8: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
9: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
8: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
9: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge. Hi, bye, super hit.
5: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducktime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
10: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
10: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट family dinner.
6: Foodistan in Aubrey. Everything they see. One place, one vibe.
12: It's true. Hum apni sadbuddhi se bahut si problems solve kar sakte hain. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji. 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल. फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्रे परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, where every bite is a celebration.

0: Pi.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
3: Haan, dekh lenge.
2: To fir India ki ticket kab karwaye?
3: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
4: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Wahi timeless craftsmanship, wahi unmatched elegance aur wahi stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
5: मेरे कल वाले खाने में दोसा आने वाले खाने में डोसा।
6: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? Your search ends here.
4: San Idli Vegetarian Restaurant, 100% pure vegetarian made with fresh authentic flavors. Crispy dosas, fluffy idlis, comforting South Indian thali aur saath mein shahar ki best filter coffee. Family dinners to catering services with Jain friendly options.
6: Visit San Idli Veg Restaurant at the Highway 121 or Custer Junction.
7: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
8: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
7: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
6: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
9: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? कहीं पे काला जादू धुआं धुआं क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का
10: पंडित रामनाथ जी जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा लव प्रॉब्लम शादी में डिले करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव
6: विजिट psychicramnath.com कॉल 4693-347-4401 प्लेनो मैकिनी अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
13: बैठ जाऊं पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
14: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
13: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
15: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
16: इन प्लेनो
15: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपेटिटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
12: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
17: जीनी हुकम मेरे आका हम आज पार्टी के मूड में हैं एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो
18: मिराज लाउंज चलिए मेरे आका लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं
19: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं
18: नो प्रॉब्लम आका लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए
19: और एंटरटेनमेंट
18: मूवी नाइट बेली डांसिंग नाइट्स प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में
19: वाह जीनी ये जगह है या कोई जादू
18: जादू नहीं मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे मिरेकल्स हैपन इन मिराज
8: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
6: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
6: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
8: सच में सब संभालेंगे
6: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
14: Hi, this is Rani Mukherjee. You're listening to Fun Asia Radio.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Kahan gaya? Kahan rakha tha? Suno na, mera wo wala set kahan hai?
8: Kaun sa?
7: Arre, wo gold wala, thoda traditional, usme polki bhi hai.
8: अरे सारे तो सेम है
7: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
8: ओ हाँ ये तो अलग है
9: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को श्री कृष्णा ज्वेलर्स क्राफ्टेड फॉर मोमेंट्स दैट मैटर विजिट श्रीकृष्णा.com
7: अरे वो केक आया क्या
8: डीजे कौन हैंडल करेगा
10: डेकोर वाले को कॉल किया
8: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया
7: रिलैक्स ऑसम इवेंट्स को कॉल किया
8: ऑसम इवेंट्स
7: हाँ भाई वेडिंग हो बर्थडे बैश कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट अमरीन हसनात एंड द टीम विल हैंडल एवरीथिंग
11: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन टेंशन खत्म
7: नॉट जस्ट दैट बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ
9: कॉल नाउ एट 214-725-7466 दैट्स 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Don ko pakadna mushkil hi nahi.
15: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है एक हफ्ता दस दिन अगले ट्यूसडे
16: तारीख पर तारीख
9: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट आज बुखार आज डॉक्टर आज इन्फेक्शन आज डॉक्टर आज एनुअल चेकअप आज डॉक्टर प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग प्लेनो फ्रिस्को मकिनी ऑबरी
15: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259
17: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं
7: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
18: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
20: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए
21: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
20: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं
21: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
20: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है
21: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स
20: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338 दैट्स 817-786-3338
10: Hi, I'm Abhishek Bachchan, and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there, watching our films. Thank you, Funasia Radio, for spreading the word.

0: मेरे पिताजी कहते हैं कि दारू पीने से लिवर खराब होता है, और मैं कहता हूँ कि बोल बच्चन से कुछ खराब नहीं होता।
1: नौटंकी गड़ी गड़ी ड्रामा करता है। अरे ऐसे ही बोल बच्चन करता रहेगा तो आसमान से गिरेगा खजूर में अटकेगा।
2: या फॉलिंग फ्रॉम स्काई स्क्रेपर हैंगिंग इनटू ड्राई फ्रूट एंड नट।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: ये सेट सिर्फ शादी के लिए ठीक है, ये वाला बहुत हैवी है। और ये कब पहना था लास्ट टाइम?
1: तो पहनती क्यों नहीं हो?
0: कैसे पहनूं? या तो हैवी या फिर स्पेशल ओकेशन टाइप।
1: तो रोज वाला ले लो।
2: India's most loved everyday jewelry brand, CaratLane is here. Get your everyday real diamonds now. Because jewelry is meant to be worn, not to be kept inside a locker. CaratLane now open next to Tanishq in Frisco.
3: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
4: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
3: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
4: Papri chaat se malpua rabri tak, har डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट।
5: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
6: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
5: नहीं?

0: website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, har bhai super hit.
1: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
2: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
1: नहीं।
2: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
1: नहीं।
2: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
1: वो भी नहीं।
2: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
0: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
2: लुकिंग टू अर्न एक्स्ट्रा फ्लेक्सिबल इनकम और इवन बिल्ड अ न्यू करियर? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers, we're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
0: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
5: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume!
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
8: Haan, dekh lenge.
7: To fir India ki ticket kab karwaye?
8: Are tumhe jewelry dekhni hai ya rishtedaron ko?
9: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Wahi timeless craftsmanship, wahi unmatched elegance, aur wahi stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
10: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
11: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
10: कहाँ?
12: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट D-Vibe, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
13: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी, वन प्लेस, One vibe.
14: ये तारा वो तारा हर तारा.
11: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं. बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है. तारा कमर्शियल एनर्जी. 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर. होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स. कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस. तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे. तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे.
15: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duck Time.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Main shaadi karungi to Kareena wala designer lehenga pehen ke karungi. वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
20: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
13: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
20: वेट, इतना सब और प्राइस?
13: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
21: मैं हीरो.
22: इट्स ट्रू, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस. विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, Pandit Ishwar ji can help you with any difficulty in your personal or professional life, from relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwar ji, 945-527-0897, or visit astrologerishwar.com.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: जीनी हुकम मेरी आका हम आज पार्टी के मूड में हैं। एक ऐसी जगह बताओ जहां मेरी एंट्री ही रॉयल हो।
3: मिराज लाउंज चलिए मेरी आका, लग्जरी लिमोजीन राइड्स आपके इंतजार में हैं।
2: मुझे ज्यादा क्राउड पसंद नहीं।
3: नो प्रॉब्लम आका, लग्जरी प्राइवेट स्पेस भी हाजिर है आपकी प्राइवेट पार्टी के लिए।
2: और एंटरटेनमेंट,
3: मूवी नाइट, बेली डांसिंग नाइट्स, प्रीमियम हुकर्स और अमेजिंग वाइब्स सब आपकी खिदमत में।
2: वाह जीनी, ये जगह है या कोई जादू?
3: जादू नहीं, मिराज लाउंज एट मिकिनी रेंज पार्कवे। मिरेकल्स हैपन इन मिराज।
4: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रीफाइनेंस अब और भी आसान। myfamilyhomeloan.com देता है ट्रांसपेरेंट प्राइसिंग, नो हिडन फीस, नो सरप्राइजेस। और हाँ, सबसे बड़ी खबर, उनका AI पावर्ड प्लेटफॉर्म रियल टाइम रेट्स कंपेयर करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स। 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा। विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338, 4697343338।

0: करता है ताकि आपको मिले बेटर डील्स एंड फास्टर अप्रूवल्स. 15,000 प्लस गूगल रिव्यूज, हजारों फैमिलीज का भरोसा. विजिट myfamilyhomeloan.com और कॉल 4697343338 4697343338. myfamilyhomeloan.com is powered by Loan Factory. NMLS 2025289, licensed mortgage broker in Texas. All loans subject to credit approval. Equal housing lender.
1: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
2: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
7: मेरे कल वाले खाने में डोसा, आने वाले खाने में डोसा।
8: क्या आपको भी हमेशा डोसा की क्रेविंग्स रहती है या फिर ऑथेंटिक वेज खाने की तलाश? योर सर्च एंड्स हियर।
9: सैन इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, 100% प्योर वेजिटेरियन मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स, क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कंफर्टिंग साउथ इंडियन थाली और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शंस।
10: विजिट सैन इडली वेज रेस्टोरेंट एट द हाईवे 121 or Custer Junction.
11: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
12: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभालेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 4694428770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन पार्टनर।
15: तू ही मेरा मेरा मेरा, तू ही मेरा मेरा मेरा।
16: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।
2: डेलस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

और इसी थॉट के साथ दोस्तों आप सभी को वेलकम करती हूँ। हेलो नमस्ते नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मजे में है ना? जी हाँ, मजे में तो रहना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सुन रहे हैं नेशन का वन एंड ओनली वन फन स्टेशन फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। दोस्तों मैं हूं आपकी होस्ट और आपके सुरीले सफर की साथी, आपकी अपनी अपूर्वा। स्वागत करते हुए इस खूबसूरत सी सन की शाम में आप सभी का। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है दोस्तों आपका और मेरा साथ, जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए और हमारी बिग फैन टीवी ऐप के जरिए। तो स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने शो में जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, हमारी शाम मस्तानी, दीवानी, तूफानी, बेगानी, रेनी, फॉगी, गर्मी वाली और आज जैसे बहुत बहुत गर्मी वाली। कैसे भी हो हमें तो अच्छी लगती है बहुत ही सुरीली और म्यूजिकल गाने ही ऐसे चलते हैं यहाँ पर, कुछ मेरे कुछ आपके पसंद के। तो चलिए आज के शो में आज हम मेरे आपके पसंद के स्लो पेस्ड गाने और फास्ट पेस्ड गाने सुनते हैं। जी हाँ, थोड़ा सा कार्डियो करते हैं, संडे का फंडे आ चुका है दोस्तों, तो थोड़ा सा कार्डियो भी हो जाए। बहुत दिनों से कार्डियो किया नहीं है। कार्डियो का मतलब ये है कि मैं आपको पहले एक स्लो पेस्ड गाना सुनाऊंगी और उसी के बाद उसी मूवी का एक फास्ट पेस्ड गाना सुनाऊंगी और इसी से आपका हो जाएगा कार्डियो और एक्सरसाइज की एक्सरसाइज भी हो जाएगी, गाने का गाना भी सुनना हो जाएगा। एक तीर से दो शिकार करते हैं भाई हम। तो चलिए विदाउट एनी डिले आपको पहला गाना सुनवाती हूँ, स्लो पेस गाना, और उसके बाद आगे आगे आएगा फास्ट पेस गाना।

श्रेया घोषाल और जावेद बशीर की आवाज में दोस्तों भागम भाग मिल्खा भाग मूवी से सुन रहे थे आप ये स्लो पेस गाना और इसी मूवी का अभी फास्ट पेस्ड गाना आपको सुनवाऊंगी और बढ़ेगी आपके दिल की धड़कनें और इसी को हम कहते हैं हमारा कार्डियो राउंड. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ट्रैक.

भाग मिल्खा भाग मूवी से आपने स्लो पेस गाना सुन लिया दोस्तों, और इसी के बाद आपको मैंने सुनाया एक फास्ट पेस गाना। यही चलने वाला है हमारे शो का सिलसिला, एक स्लो पेस गाना एक मूवी का और उसी मूवी का फास्ट पेस गाना, जिसको हम हमारा कार्डियो सेगमेंट बोलते हैं। अगर ऐसे कोई गाने आपके जहन में आ रहे हैं या फिर ऐसे कोई स्लो पेस और फास्ट पेस गाने आपको एक ही मूवी के सुनने की इच्छा आकांक्षा या मनोकामना है, गिव मी अ कॉल। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। दो गाने आपको रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे, वो दो गाने यहाँ पर जरूर प्ले किए जाएंगे। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले स्लो पेस गाने की तरफ, एंड दिस टाइम द मूवी इज ये जवानी है दीवानी।

ऑलराइट, और इसी के साथ बढ़ते हैं इसी मूवी के फास्ट पेस्ड गाने की तरफ दोस्तों, और इसके बाद आने वाला है छोटा सा ब्रेक। अगर आपको भी किसी मूवी के स्लो पेस्ट या फास्ट पेस्ट गाने सुनने की इच्छा आकांक्षा या मनोकामना है, 9722355555 है स्टूडियो का नंबर।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
4: बैठ जाऊँ? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
5: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
8: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
9: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
2: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
8: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
10: हेलो टेक्सास परिवार, क्या आपको पता है देर इज अ फर्स्ट टाइम होम बायर प्रोग्राम अंडर फेनी एंड फ्रेडी फॉर कंफर्मिंग लोन्स दैट हेल्प्स यू टू गेट बेटर रेट्स बाय ऑलमोस्ट हाफ अ पॉइंट टू 1%। सो कॉल कीजिए कामना को एट 214-845-4189, क्योंकि आपका भरोसा ही मेरी पहचान है। NMLS 96641।
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं।

0: भरोसा ही मेरी पहचान है, NMLS 96641।
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिजल्ट्स में वेरी।
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
5: क्या मतलब?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914।
5: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.
9: जिंदगी के कई रंग, फनीशा रेडियो के संग।

0: गुड इवनिंग दोस्तों एंड वेलकम बैक. ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है. You are listening to the Phoenicia Network broadcasting non-stop Bollywood entertainment here on 104.9 FM Fun Asia Radio and also on 104.1 FM Radio Caravan. मैं हूँ आपकी अपनी आरजे पूर्वा और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी. दोस्तों एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ. जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइन के जरिए 9722355555 के जरिए. आज के सेगमेंट में हो रहा है दोस्तों कार्डियो सेशन. जी हाँ, कार्डियो सेशन मतलब कि क्या होता है, एक ही मूवी का स्लो पेस गाना और उसी मूवी का फास्ट पेस गाना आप सभी को सुनवाती हूँ और इसी के साथ साथ हमारा हो जाता है कार्डियो सेशन. जी हाँ, जब हम स्लो पेस गाना सुनते हैं हमारे दिल की धड़कने स्लो स्लो चलती है, बट जब भी जिस तरीके से हम फास्ट पेस गाना सुनते हैं वैसे ही हमारे दिल की धड़कने तेज हो जाती है. और सो हो गया ना हमारा कार्डियो सेशन. ये कार्डियो सेशन वैसे बहुत पॉपुलर है दोस्तों, तो अगर आपको भी आपके पसंद के स्लो पेस फास्ट पेस गाने की मूवी के सुने हैं 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. विद दैट आपको लेकर चलती हूँ अगले रिक्वेस्टेड गानों की तरफ. तमाशा मूवी से स्लो पेस और फास्ट पेस गाना सुनने की इच्छा आकांक्षा या मनोकामना रखते हैं मिस्टर सुबू जी, तो चलिए आपको पहले स्लो पेस गाने की तरफ लेकर चलती हूँ. एंजॉय दिस ट्रैक.
1: सीरियसली?
2: नो सीरियसली तारा, ये कॉम्प्रोमाइज है कि नहीं? ऐसा मत करो, वेट करो, आएगा.
1: मैं सब ठीक कर दूंगी.
2: समझ नहीं आ रहा, छोड़ो मेरा.
1: मैं नहीं चाहती.

मोहित चौहान की बहुत ही फन लविंग आवाज में दोस्तों सुन रहे थे आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी तमाशा। कार्डियो सेशन चल रहा है दोस्तों। जी हाँ, एक ही मूवी का स्लो पेस गाना और उसी मूवी का फास्ट पेस गाना, ऐसे आपका सेशन आपको सुनवा रही हूँ। तो अगर आप कभी ऐसे कोई गाने सुनने की इच्छा आकांक्षा या मनोकामना है, आप भी ऐसे गाने रिक्वेस्ट कर सकते हैं। एक ही मूवी का स्लो पेस गाना और उसी मूवी का फास्ट पेस गाना, जी हाँ आपको दो गाने रिक्वेस्ट करने पड़ेंगे। विद दैट आपको लेकर चलती हूँ मेरे पसंदीदा स्लो पेस और फास्ट पेस गाने की कॉम्बिनेशन की तरफ। दिस वन इज टेकन फ्रॉम द मूवी दिल चाहता है।

दिल चाहता है मूवी से। दोस्तों आपने एक स्लो पेस गाना सुना जो कि था जाने क्यों लोग प्यार करते हैं और दिस वन विच इज कॉल्ड कोई कहे कहता रहे। कार्डियो सेशन चल रहा है जहां पे मैं हर एक मूवी से आपको स्लो पेस गाना और उसी मूवी का फास्ट पेस गाना सुनवाती हूँ। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले कॉम्बिनेशन की तरफ, बट उससे पहले आपको बता दूं दैट देयर इज अ ब्रेकिंग न्यूज नाउ ऑन पेज 3। डैलस हैज गॉट अ न्यू फ्लेवर एट एच हब 121 पेज 3 ईटरी वेयर बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड मीट्स मॉडर्न फ्लेयर। कबाब्स, चाट, फ्यूजन बाइट्स एंड मॉकटेल्स, वाइब्रेंट वाइब्स फॉर ब्रंच, लंच और डिनर, परफेक्ट फॉर फूडीज, डेट्स एंड फ्लेवर चेजेस। विजिट page3eatery.com फॉर फर्दर डिटेल्स।

दोस्तों बढ़ रहे हैं अब छोटी से ब्रेक की तरफ और उसके बाद हमारा कार्डियो सेशन फिर से कंटिन्यू रहेगा, कहीं मत जाइएगा। स्टे ट्यून्ड टू 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो। दिस इज योर होस्ट आरजे अपूर्वा, मैं यू गई और यू आई।